आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: प्रण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखने की, पहली बात हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्रियों पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली ये सब जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर काट कर खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती, इसलिए मदिरापान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार गंदा पेय इसको रोके। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है। जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती है वहां विपत्ति दुख चिंता शोक डिप्रेशन ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख संतोष शांति दया करुणा मैत्री ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को ये समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया, एक बूंद भी पानी जवान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे, और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीला अमृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है, अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो, पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय, हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है उसका कल्याण हो गया, और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है तो कह रहे हैं कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन्य पतरे चक्षु प्रमादादपि, प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी, ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि ये महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में।
0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797076575।

0: ठंडा मौसम में राव रेडियो दोस्त दीपाली इरोज की तरह हाजिर बाड़ी प्रोग्राम आपन दी आपन देखभाल लेके सवेरे सवेरे जब ले हम रउआ से ना मिली तब ले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा त श्रोता लोग सवेर त हो गइल बा आ हमरा पता बा कि रउआ सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगावले बानी आज के घरेलू नुस्खा सुने खातिर त अब हम अपना कार्यक्रम की शुरू करी ओइसे पहले रउआ सब की दीपाली की ओर से नमस्कार सुप्रभात दोस्त लोग आज जानल जाए सबसे पहले चमकत त्वचा खातिर कुछ पौष्टिक पेय के बारे में दोस्त लोग अपना डाइट में शामिल करी जूस और पानी पेय पदार्थ के हमनी के डाइट में एगो अलग ही भूमिका होला फिर भले ही वो पेय पदार्थ पानी होके या जूस एक नियमित सेवन से हमनी के त्वचा में निखार आवे के साथ ही शरीर के भी भरपूर ऊर्जा मिलेला जूस जहां आयरन और विटामिन से भरपूर होला उन्हें वेजिटेबल जूस यानी सब्जी के जूस शरीर खातिर उपयोगी पोषक तत्व से युक्त होला ये दोनों ही तरह के जूस के सेवन शरीर खातिर फायदेमंद होला यदि रउआ बेहतर स्वास्थ्य पावे के इच्छा रखतनी रउआ आज ही से अपना डाइट में जूस और पानी के उचित मात्रा के शामिल करे के हुई कम मात्रा में पानी पिए से हमनी के शरीर में पानी की कमी हो जाला जेके प्रभाव शरीर के साथ ही त्वचा पर भी देखल जा सकेला चमक के बरकरार रखे खातिर रुआ हर दिन भरपूर मात्रा में पानी के सेवन करे के चाहिए पानी हमनी के त्वचा के कोशिका के भी प्रमुख तत्व होला जे तरह से हमनी के त्वचा के बाहरी नमी के बरकरार रखे खातिर ओई पर मॉइस्चराइजर लगावे निसन ओई प्रकार से त्वचा के अंदरूनी नमी व पोषण प्रदान करे खातिर हमनी के पानी के अधिक से अधिक सेवन करे के चाहिए सौ प्रतिशत फल या सब्जी से बनावल गयल जूस हमनी के शरीर में विटामिन के पूर्ति करे के साथ ही त्वचा के भी पोषण प्रदान करेला जवाब होके के साथ ही जूस त्वचा की गहराई से सफाई कर विषैला पदार्थ के बाहर निकालेला एगो रिसर्च के अनुसार गहरा रंग के फल के जूस शरीर खातिर अधिक गुणकारी होला ब्लूबेरी के जूस में हमनी के शरीर व त्वचा के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर मात्रा होला चुकंदर के रस भी स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होला ओलोंग टी के ब्लैक ड्रैगन टी के नाम से भी जानल जाला के ई विशेष प्रकार रोआ चाइनीज रेस्टोरेंट में देखे के मिली ई चाय में भरपूर मात्रा में पॉलीफिनोल्स होला जौन की एक्जिमा और झुरी जैसन समस्या से त्वचा की सुरक्षा करेला आँख के नीचे काला घेरा चेहरा पर झुरी जैसन बढ़त उम्र के लक्षण के कम करे व वजन के नियंत्रित करे में ओलोंग टी बड़ा ही कारगर होला त्वचा कालीपन व खुजली के खत्म करे के साथ ही एलोवेरा के जूस त्वचा संबंधी अन्य समस्या जैसे एक्जिमा सोरियोसिस में भी औषधि के तरह काम करेला। शुद्धि पाचन क्रिया के बढ़ावल आर्थराइटिस में कारगर व शारीरिक क्षमता के बढ़ावे के साथ ही एलोवेरा जूस के अनगिनत फायदा होला। रोजाना एक कप एलोवेरा जूस के सेवन हमने के स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी कई गो समस्या के निदान में कारगर है। बगैर उबालल हरा पत्ती से बनावल जाला। यह वजह है कि ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पॉलीफिनोल्स होला। जौन एगो ऐसन केमिकल कंपाउंड है जौन के पिगमेंट एंटी एजिंग के तौर पर कार्य करके त्वचा में झुरी के कम कर ओई के फोटो प्रोटेक्शन देवेला। विशेषता ओई के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होला। बाल खातिर भी ग्रीन टी बेहतर है। यदि हम शुद्धता की बात करी तो चाय में शुद्धता के मामला में ग्रीन टी से बेहतर कौनो नहीं खे। टी भी ग्रीन टी के समान पत्ती से ही बनावल जाला। स्वीट स्पाइसी चॉकलेट आदि ब्लैक टी के अलग अलग फ्लेवर्स होला। विटामिन ई और सी के साथ ही ब्लैक टी में मौजूद स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण के कम करेला। ऐसन एस्ट्रिजेंट के तौर पर काम करेला जैसे चेहरा बेदाग व चमकदार बनेला। ब्लैक टी के बेहतर परिणाम खातिर एके बिना दूध के पी काहे कि दूध एके एंटीऑक्सीडेंट गुण के घटावेला। कॉफी के सेवन ना करी। कॉफी में कैफीन व शुगर की अधिक मात्रा होखे के कारण इस त्वचा पर कील मुहासा के कारण बनेला। कॉफी में मौजूद टैनिन त्वचा के शुष्क बनावेला। अल्कोहल त्वचा के नमी के सोख त्वचा में ढीलापन लावेला। कॉकटेल डाइग्यूर्स और मार्गरीटा में शुगर के बहुत अधिक मात्रा होला जौन त्वचा के नुकसान पहुंचावेला। सोडा में मौजूद शुगर व अन्य सामग्री हमनी के स्वास्थ्य खातिर नुकसानदेह होला। सोडा के अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर के कम कर देवेला। बेहतर स्वास्थ्य खातिर जहाँ तक संभव हो के हमनी के सोडा पिए से बचे के चाहिए। तो दोस्त लोग अब हम ले आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम से जाए के अनुमति। तो खुशी खुशी आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। रुआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। फिर होई हमार भेंट काल। तब तक खातिर नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल माया।

0: क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388 या 9198।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर, हर

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्या और आर्म्स एक्ट में एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अनुश्रवण समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। तेंदुए के हमले से एक बछड़े की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। 3 दिन से लापता एक सफाई कर्मी का नाले से मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में आ सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री, स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। उचका गांव थाना क्षेत्र में 2012 में हुई एक हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1,20,000 रुपए का अर्थ दंड भी अदालत ने लगाया। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में ADJ 9 की अदालत ने उचका गांव थाना कांड संख्या 124/2012 के मामले में सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के अभियुक्त लाल बाबू मियां, पिता शान अली साकिन छोटकी पिपराही थाना उचका गांव को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी, साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की साधारण कारावास भुगतनी होगी। इस मामले में सजा सुनाने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इसमें अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शर्मा की खास भूमिका रही। साथ ही कुचायकोट थाना क्षेत्र में कांड संख्या 165 2009 दहेज उत्पीड़न के आरोपी को भी 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई और 2,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभियुक्त हरीश चंद तिवारी पिता श्रीकांत तिवारी जो उचका गांव के वृंदावन के रहने वाले हैं इनको अदालत ने दोषी पाया और इन्हें 3 वर्ष सश्रम कारावास और 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। इनको भी पुलिस ने सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद आलोक कुमार सुमन और बरौली के विधायक मंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 55 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें कुल पीड़ितों आश्रितों के बीच 54,39,000 रुपए मुआवजा के रूप में भुगतान कर दिया गया। हत्या के मामले में कुल 39 पीड़ितों का पेंशन भुगतान भी शामिल है। बैठक में उपस्थित सांसद ने निर्देश दिया के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत सभी थानाध्यक्ष अविलंब प्राथमिकी दर्ज करें, इसमें अनावश्यक विलंब एवं पीड़ितों को परेशान न करें। सांसद ने पुलिस उपाधीक्षक को भी निर्देश दिया कि हत्या के मामले में लंबित आरोप पत्र की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अविलंब उन्हें उपलब्ध कराया जाए, साथ ही 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करने में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एवं सरकारी अधिवक्ता तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेमरवारी गांव में एक तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कल देर रात तेंदुए के हमले से एक गाय के बछड़े की मौत हो गई। तेंदुए ने आधी रात को गांव में घूमते हुए बछड़े को निशाना बनाया। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। कई जगहों पर तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग और प्रशासन की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास भी शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पंजों के निशान से गांव में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई। झरही नदी के किनारे छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने का अपील भी किया है। शहर में 3 दिनों से लापता नगर परिषद के सफाई कर्मी का शव नाले से मिला है जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना गोपालगंज शहर के राम नरेश नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय चुन्नी राम के रूप में हुई है जो गोपालगंज नगर परिषद में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से वे लापता थे। परिजन लगातार उनकी खोजबीन कर रहे थे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच सुबह घर के पास स्थित खुले नाले से जब बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी और जांच भी किया गया जिसके बाद नाले में शव मिला। आसपास के लोगों के सहयोग से पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नाले पर स्लैब नहीं लगा हुआ था। परिजनों ने आशंका जताई है कि खाने पीने के दौरान नाले में गिरने से चुन्नी राम की मौत हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी इसमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अगर परिजनों से लिखित आवेदन मिलेगा तो आगे की कार्रवाई और जाँच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश के मुखिया सम्राट चौधरी का गोपालगंज में आगमन हो सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मुख्यमंत्री गोपालगंज में आ सकते हैं। यहां थावे मां भवानी का दर्शन पूजन भी करेंगे, साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी काफी उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जोरदार तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया है। वे कितने बजे पहुंचेंगे और जिले में उनका क्या क्या कार्यक्रम है इसकी रूपरेखा आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है। भाजपा के थावे प्रखंड के नेता संजय प्रसाद गुप्ता के पुत्र सोनू गुप्ता की दुबई में ईरान हमले के दौरान हुई मौत की दुखद घटना पर आज जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल और सांसद के प्रतिनिधि रामाशीष सिंह मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सांसद आलोक सुमन से भी पीड़ित परिवार की बात कराई गई और जल्द से जल्द मुआवजा के साथ मृतक के शव को घर मंगाने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई।
10: प्रमोद पटेल ने कहा कि जो भी आवश्यक दस्तावेज थे वह उपलब्ध कराए गए और सांसद महोदय के नेतृत्व में लगातार परिवार को आवश्यक सहयोग करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। मानव तस्करी के विरुद्ध गोपालगंज पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर नया सवेरा नाम से अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए गोपालगंज पुलिस ने एक गाना भी लॉन्च किया है, जिसमें स्पष्ट संदेश मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए सुना जा सकता है। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में आज NI एक्ट 138 के वादों के निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। बताया जा रहा है कि व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायालयों में लंबित NI एक्ट 138 के वादों का निष्पादन आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित जिन लोगों के भी मामले लंबित हैं, वे लोग न्यायालय में या लोक अदालत के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इधर भोरे के जगतौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित सिंह से पूछताछ के दौरान हत्या की नियत से रखी गई एक अवैध देसी कट्टा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस कट्टा को भगवान टोला निवासी बलवंत कुमार के पास छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए बलवंत कुमार को भी गिरफ्तार किया है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से कृषि में सुखाड़ प्रबंधन विषय पर कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर PK मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति तथा देश के कृषि विकास में ICAR के अमूल्य योगदानों पर जागरूकता सत्र के साथ शुरू किया गया। नगर थाना की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लखपतिया मोड़ के पास छापेमारी करते हुए विकास कुमार पिता अजय प्रसाद, जो तिवारी टोला थाना कुचायकोट का निवासी है, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जिसे जब्त किया गया है। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त ब्यास बीन को गिरफ्तार कर लिया। यह उचका गांव के पिपराही का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर भी पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई मामलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सल्लेपुर गांव के रहने वाले अभिषेक कुमार उर्फ टमाटर पर भी गोपालगंज पुलिस ने 20,000 रूपए का इनाम घोषित किया है। भोरे थाना में एक मामले में फरार चल रहे मुकेश महतो पिता साजन महतो साकिन सरया पिपरा थाना गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण की भी गिरफ्तारी पर 10,000 रूपए का इनाम रखा गया है। इस पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। साथ ही जादोपुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी राकेश राय पिता सुनेश्वर राय, जो बरई पट्टी थाना जादोपुर का निवासी है, इस पर शराब की तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। इस पर भी पुलिस ने 20,000 रूपए का इनाम घोषित किया है। माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में नितेश कुमार पिता राम सुंदर राम और राम सुंदर राम पिता भगवान राम तथा एक विधि विरुद्ध बालक है। ये सभी माझागढ़ के प्रतापपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त संदीप कुमार पिता ललन प्रसाद, जो लोहिजरा थाना माझा का निवासी है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 109 2026, जिसमें 24 ग्राम सोने की चैन की बरामदगी या चोरी हो गई है या इससे संबंधित सूचना देने पर पुलिस 10,000 रूपए का इनाम देगी। कटिया थाना की पुलिस ने भी 14 फरवरी 2026 में हुई चोरी के एक मामले में, जिसमें 3 किलो चांदी और 15 ग्राम सोने के आभूषणों की चोरी हुई थी, इस मामले में भी सूचना देने वाले व्यक्ति को 20,000 का इनाम देगी। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील किया है कि किसी भी तरह की इसमें जानकारी मिले तो गोपालगंज पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आरोपियों को पकड़वाने में अगर आप पुलिस की मदद करेंगे तो आपको उक्त इनाम दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
9: हत्या और आर्म्स एक्ट में एक आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। अनुश्रवण समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। तेंदुए के हमले से एक बछड़े की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। 3 दिन से लापता एक सफाई कर्मी का नाले से मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में आ सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री, स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन।
11: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
14: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
14: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
16: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
16: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
18: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
21: एक रंग इश्क का।
22: पिछले पन्ने के रंग में आपने जाना कि डेविड ने मीनल को अपने घर बुलाया था और साथ में अमिया को भी आने को कहा। जब अमिया और मीनल डेविड के घर पहुंची तो उसका घर उन्हें बड़ा शांत सा लगा था। डेविड खाना बनाने का भी शौकीन है, ये बात उस दिन मीनल को पता चली थी। थोड़ी देर बाद डेविड मीनल को अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले गया, जहां उसने एक तस्वीर से पर्दा हटाया था। वो तस्वीर कहने को तो रोशनी की थी, पर उसकी शक्ल हूबहू मीनल की तरह थी। आखिर ये कौन सा रंग है इश्क का, ये जानिए आज के पन्ने में। डेविड ने जैसे ही पर्दा हटाया, वहां एक खूबसूरत सी शक्ल की तस्वीर थी, जो मीनल की तरह ही थी। मीनल ने आश्चर्य से पूछा था, ये तो मैं हूँ। डेविड ने मुस्कुरा के जवाब दिया,
21: ये मेरी रोशनी है।
22: मीनल बहुत ज्यादा अचंभे में थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर एक शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं। इस तस्वीर में जो लड़की रोशनी थी और मीनल की शक्ल हूबहू मिलती थी। थोड़ी देर वहां पे बात करने के बाद मीनल वहां से निकली और खाने के टेबल पर पहुंची। मीनल ने खुद में ठान लिया था कि वो कभी भी डेविड से रोशनी के बारे में सवाल नहीं करेगी, क्योंकि अगर डेविड को कुछ बताना ही होगा तो वो खुद ही बता देगा। और अगर उसके जहन में यही है कि उसे छुपाना चाहिए या शायद कोई गम है जो खुद तक ही रखना चाहता हो, तो उसे कुरेदना नहीं चाहिए। डेविड का हर कमरा अपने खास पहचान से जाना जा सकता है, और वो पहचान है उसका आर्ट। हर कमरा कुछ अपनी ही कहानी कहता है, किसी में दर्द है, किसी में प्यार, किसी में इंतजार, किसी में तकरार। वो सोचती रही कि आखिर क्यों डेविड ने अपने आप को इतना सीरियस बना रखा है। वो कई बार शाम को डेविड के किए गए जोक्स पर हंसने लगती और कई बार उसकी फिलोसफिकल बातों पर उसे अप्रिशिएट भी करती थी। इन्हीं सब उधेड़बुन के साथ ही मीनल ने डेविड के घर पर खाना खाया और फिर डेविड ने मीनल और अमिया को हॉस्टल छोड़ा। मीनल अक्सर डेविड की बातें और हरकतों पर गौर करती रहती, मीनल साथ ही अपनी पढ़ाई और कहानी और कविता लिखने के शौक को भी सीरियसली ले रही थी। उसने काफी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी थी जिन्हें लघु कथा की पंक्ति में अच्छा नाम मिल रहा था। डेविड ने उसे कुछ बड़ी कहानियां लिखने को भी प्रेरित किया जिन पे मीनल ने बड़ी ही संजीदगी से हाँ किया और काम भी किया। वो अपनी कविताओं और शायरी की दुनिया में ही अपनी कहानियों को भी जगह देने लगी थी। ये वक्त ही तो है, अक्सर बड़ी तेजी से भागता रहता है। अब मीनल की कहानी को ही देख लो, क्या पता था कि वक्त ऐसे ही ख्यालों और बातों के सहारे इतना जल्दी निकल जाएगा कि मीनल अपने फाइनल ईयर के पेपर्स की तैयारी करने लगेगी। इन गुजरे हुए सालों में मीनल ने बहुत कुछ सीखा था, बड़े करीब से उसने लोगों को परखा था, बहुत कुछ उसकी जिंदगी के आसपास भी बदला था। बस एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, मीनल के जीने का अंदाज। वो आज भी अपने बचपन को समेटे हुए थी, वो अभी भी अपनी मासूमियत को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानती थी। डेविड के साथ भी उसका रिश्ता काफी सुलझा सा था, दोनों काफी बातें किया करते थे। डेविड मीनल के भविष्य की बातें करता पर कभी अपने पन्ने टटोलने की कोशिश तक नहीं होने देता था। डेविड की दुनिया खुद में एक रहस्य थी और मीनल भी उसके फैसले का सम्मान करती थी। मीनल जानती थी कि डेविड को जब सही लगेगा वो खुद ही अपने भूतकाल को उसके सामने ले आएगा। मीनल ने इस बीच अपने जज्बात को खुद पे जाहिर करने से भी कभी परहेज नहीं किया, पर डेविड के सामने कुछ आने भी नहीं दिया। वो कुछ भी जल्दबाजी करके डेविड को खोना नहीं चाहती थी। हाँ, कई बार ये जरूर हो जाता था कि दोनों अचानक ऐसे करीब सामने आ जाते कि लगता आज तो दोनों अपने एहसास को कबूल कर ही लेंगे, पर अक्सर दोनों उसे एक परिस्थिति मान के उस पे पर्दा डाल दिया करते थे। अब तो दोनों की आदत में शुमार हो चुका था करीब आना और मुस्कुराकर अलग हो जाना। दोनों कई बार इसका मजाक भी बनाते थे, अक्सर तो मीनल ही मजाक उड़ाती थी, डेविड तो बस मंद मंद सा मुस्कुराता रह जाता था। डेविड का शर्मीला स्वभाव उसी वक्त जाहिर हो जाता था जब मीनल उसे इन तरह की घटनाओं के लिए छेड़ा करती थी। उस वक्त डेविड की मुस्कुराहट से उसके गालों पर दो गड्ढे भी पड़ते थे। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी तकरार भी जायज है। ऐसे ही एक वाक्य याद आता है। उस दिन मीनल अपने किसी दोस्त के घर जाने वाली थी और शाम को लौटने वाली थी। ये बात उसने डेविड को भी बताई थी।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
23: सुनिए,
24: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
23: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
24: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
23: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: एक रंग इश्क का।
22: डेविड ने उसे कहा,
25: ठीक है तो मुझे हॉस्टल पहुंचकर कॉल कर देना।
22: उस रोज तक डेविड और मीनल के बीच इतनी नजदीकियां तो हो ही गई थी कि मीनल जब भी बाहर जाती और वापस आती अपनी जगह और पहुंचने की खबर डेविड को जरूर देती थी, वरना उसे चिंता लगी रहती थी। बहरहाल मीनल उस दिन अपने दोस्त के घर नोट्स के काम से गई थी और अमिया को हॉस्टल में कुछ काम था तो मीनल अकेली ही गई थी। वहां पहुंच के उसने डेविड को मैसेज भी किया और उसके बाद फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। डेविड भी उसे कॉल या मैसेज करके कभी परेशान नहीं करता था, वो बस उसके खुद से मैसेज करने का इंतजार करता था। पर ना जाने क्या सूझा, डेविड ने मीनल को कॉल किया। पूछा कि वो हॉस्टल के लिए कब निकलेगी, क्योंकि शाम के 7 तो बज ही चुके थे। मीनल ने बताया कि वो 10 मिनट में वहां से निकलेगी। फिर डेविड उसके मैसेज का इंतजार करने लगा। शाम के 8 बजे, 9 बजे, फिर रात शुरू हुई और रात के 11 बजे तक मीनल का कोई मैसेज नहीं आया। डेविड ने लगातार मीनल को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। डेविड ने परेशान होकर अमिया को कॉल किया और उससे मीनल के बारे में पूछा। उसने बताया कि मीनल अब तक नहीं पहुंची है और दीपक के घर से तो वो 7 बजे की निकली हुई है। डेविड ने दीपक के घर जाने तक का फैसला किया और हर जगह पे जहां मीनल जा सकती थी पूछताछ की। एक बार तो सोचा कि पुलिस कंप्लेंट करते, पर उसके लिए भी 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। डेविड काफी परेशान था। सुबह करीब 8 बजे मीनल हॉस्टल पहुंची। अमिया ने उससे पूछा वो कहां थी और फिर बताया कि डेविड कितने परेशान थे। मीनल ने बताया कि उसके मोबाइल में बैटरी खत्म हो गई थी और वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के घर चली गई थी, जो अचानक वहां मिल गए थे, इसलिए बताने का वक्त ही नहीं मिला। फिर तैयार होकर मीनल ने डेविड को कॉल किया। डेविड काफी गुस्से में था। उसने मीनल को मिलने बुलाया और खुद उसके हॉस्टल के करीब पहुंचा। दोनों डिपार्टमेंट के क्लासरूम में थे, जो आज संडे होने की वजह से खाली था। डेविड अपनी झुंझुलाहट को रोक ही नहीं पाया और बरसा पड़ा।
25: तुम खुद को समझती क्या हो? कहां थी पूरी रात? एक कॉल, एक मैसेज नहीं हो सकता था?
22: मीनल ने इस पर कहा, मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी और मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। काफी देर बात करने के बाद मैं काफी थक गई थी तो सो गई। सुबह अंकल ने मुझे हॉस्टल छोड़ा। डेविड ने कहा,
25: मीनल तुम उनके घर से भी कॉल कर सकती थी। हाँ?
22: मीनल ने समझते हुए बोला, पर मैं भूल गई थी और मुझे आपका नंबर याद नहीं और मोबाइल में बैटरी खत्म थी। डेविड गुस्से में बोला,
25: कम ऑन, मोबाइल चार्ज भी हो सकता था।
22: मीनल बोली, डेविड आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? डेविड गुस्से में कपकपाता सा, जबान थोड़ी लड़खड़ाती सी और बोला,
25: अब तो तुम नहीं समझोगी, दिल तो करता है तुम्हें। खैर छोड़ो, आज के बाद से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं।
22: मीनल रोते हुए बोली, सॉरी डेविड, मत जाओ प्लीज। मीनल बहुत दुखी सी थी। उसे लगा था कि उसके काम से डेविड सच में काफी परेशान हुआ है और अब सच में वो कभी उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में डेविड अपने सख्त फैसलों के लिए ही जाना जाता था। डेविड की बात से मीनल दुखी दुखी सी थी, पर फिर हॉस्टल में अपने कमरे में आके डेविड की बातें याद करने लगी और उसके गुस्से के पीछे की वजह तलाश करने लगी कि आखिर डेविड जैसा इंसान जो कि इतना सुलझा है, वो किसी पे गुस्सा और इतना नाराज कैसे हो सकता है। फिर उसे एहसास हुआ कि ये भी तो इश्क का एक रंग है और अचानक ही मीनल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। काश कोई चित्रकार इस वक्त मीनल की तस्वीर बना सकता। उलझी सी जुल्फें, आंखों में पानी और अब होठों पे मुस्कुराहट, ये रंग इश्क में ही मुमकिन है। इस पर मीनल की लिखी एक बात याद आती है, कोई क्या रंग देगा मेरे वजूद को, कोई क्या रंग देगा मेरे वजूद को, मेरी तस्वीर वो बने जो तेरी शिद्दत लगती है। तू है खुद के या मेरे करीब, बता इश्क तेरे करीब, तेरी नाराजगी भी मोहब्बत लगती है। इश्क के हजार रंग, हर रंग का अपना नशा है। मीनल अब इसी नशे को पहचान रही है। क्या गुल खिलाएगा ये नशा, या अभी कोई और रंग है जो इस तस्वीर में अभी भरना बाकी है, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का और सुनेंगे एक और रंग इश्क का।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861164।
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 62052 6112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महा

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जालंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के 2 सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमरीका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ता ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
8: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
7: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8

0: 0574-7104-06 मीरगंज ब्रांच में 9693101611
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
0: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली एक।
7: और सोनीपत के बीच होगा ट्रेन का परिचालन। एनटीए ने नीट पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। नालंदा के आयुष भलोटिया को देश भर में चौथा स्थान। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। और कमला बलान नदी में उफान के कारण दरभंगा जिले के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को पहले हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। श्री मोदी हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार के नवादा के वारिसलीगंज निवासी आयुष भलोटिया को देश भर में चौथा स्थान हासिल हुआ है। वहीं रिया रंजन छठे स्थान पर रहीं। दानापुर के रविकांत ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक हासिल की है। बिहार से लगभग 60% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडे की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार किसी जमाबंदी से असंतुष्ट है तो उसे सक्षम दीवानी न्यायालय में स्वामित्व संबंधी वाद दायर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार सरकार के समय पूर्व रिहाई के फैसले को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जे कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने चुनौती दी है। न्यायालय ने ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या को गंभीर अपराध बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की। आनंद मोहन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी जे कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी मौत की सजा को पहले पटना उच्च न्यायालय ने उम्र कैद में बदला था, जिस पर वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा सौंपा। एक वीडियो जारी कर श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।
9: इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया।
7: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेंट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के 10 हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है। इनमें राजद का एक्स हैंडल भी शामिल है। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने एक्स के माध्यम से इन हैंडल्स को 72 घंटे के अंदर विवादित कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जुलाई को राज्य के 540 मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इन विद्यालयों का नाम सरस्वती विद्यानिकेतन रखा गया है। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और मॉडल विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि क्रॉसवर्ड को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। श्री हसनैन पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में आयोजित नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रॉसवर्ड तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के रघुनाथ नगर गांव में बोरवेल में फंसे 3 वर्षीय बच्चे पीयूष कुमार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम खेलने के दौरान पीयूष कुमार बोरवेल में गिरने के बाद लगभग 35 फीट की गहराई पर फंस गया था। घटना की सूचना के बाद जिला प्रशासन की ओर से तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद पीयूष को आज तड़के 3 बजे पोर्टवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज बांका और पश्चिम चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कई जिलों में मेघ गर्जन और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: दिनांक 17 जुलाई राज्य के बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग ने कल जहानाबाद, नालंदा और पटना में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 154.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भेंटोरा गांव में एक पशुपालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के ढाड़िया गांव में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कमला बलान नदी में आई बाढ़ के कारण दरभंगा जिले के घनश्यामपुर और कुशेश्वरस्थान प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट।
2: कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर, गिदराही, नपटोलिया, कनकी मुसहरी, बैजनाथपुर, गिद्धा, भरसाहा, कैथाही समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। वहीं कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। लोग सरकारी और निजी नावों के सहारे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। इधर प्रशासन तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक और मसान समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटबंधों पर भारी दबाव बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
3: नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण जिले में गंडक समेत विभिन्न नदियों में भारी उफान है। मसान समेत कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। रामनगर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार।
0: हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि भीमनगर कोसी बराज पर नदी के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इंग्लैंड ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया जिले के पैसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार चौधरी और उनके निजी सहायक सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों को शिकायतकर्ता से एक विपत्र के भुगतान के एवज में 46,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पंचायती राज विभाग ने सीतामढ़ी जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी को पदच्युत करने की अनुशंसा खारिज कर दी है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर से जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हत्या के एक मामले में वांछित इनामी अपराधी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर में अपराधियों ने एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद में घटना को अंजाम दिया किया गया। सारण जिले के दिघवारा में पुलिस ने एक युवक को 55 डेबिट कार्ड और 3 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस बरामद कार्डों के स्रोत और उनके संभावित दुरुपयोग की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, डिजिटल शिक्षा से समरेगा बिहार का भविष्य, सीएम ने लाइव क्लास का किया शुभारंभ। हिंदुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, परिसीमन में 6,000 से 8,000 की आबादी वाली पंचायतें यथावत रहेंगी। दैनिक भास्कर इसी खबर पर लिखता है, चुनाव एक साल टला, अक्टूबर नवंबर में नहीं, अब अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे पंचायत चुनाव। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू न करें, छात्रों का तनाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पूरी रथ यात्रा में भगदड़, एक की मौत, 100 से ज्यादा घायल। आज अखबार लिखता है, इसरो में 100 वैज्ञानिकों के इस्तीफे से हड़कंप। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच होगा ट्रेन का परिचालन। एनटीए ने नीट पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। नालंदा के आयुष भलोटिया को देश भर में 4वां स्थान। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, केवल अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। और कमलावलान नदी में उफान के कारण दरभंगा जिले में के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम। जी रघुआ ठीक बानी नो?
11: हाँ बोल रहे।
10: तो नाम बता दी और कहाँ से है?
11: नाम अरदीन अहमद, डुमरिया से बोलते, उसका गाँव डुमरिया।
10: अच्छा।
11: हाँ, और सब सुना?
10: और सब बढ़िया बा। खाना वाना हो गई?
11: खाना पीना हो गए बा। रेडियो बजाओ तेने
10: बैठ के। चलिए बढ़िया बा।
11: हमारे है कार बा सरकार।
10: तो बता दी कौन गाना सुने के बारे हुआ के?
11: हमारे गाना सुना दे, मैं कभी कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार ही प्यार।
10: और ये गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं?
11: हाँ, गाना तो सबसे पहले रिमझिम के जितना लोग हैं सब सुने।
10: चलिए ठीक बार, और गाना प्ले करता नहीं?
11: हाँ ठीक बा।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
0: विकास कुमार हिंसा को।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी हैं, लो उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है,
0: बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हुआ, कल संडे को। जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश। भगवान
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी।
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज जैट पर।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: नमस्ते मैम। नमस्कार।
13: नमस्कार,
12: कैसे हैं मैम?
13: बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
12: मैं भी ठीक हूँ मैम। बारिश हो रही है ना मैम गोपालगंज में?
13: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
12: इधर तो दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रोया वारी। अच्छा, मौसम यहाँ का बहुत अच्छी कर दिया है।
13: अभी भी हो रही है बारिश?
12: जी जी जी, कल रात से लगातार बारिश हो रही है।
13: बारिश का मौसम है, एंजॉय करिए।
12: हाँ जी, बारिश तो होनी चाहिए, नहीं तो खेती बाड़ी कैसी होगी मैम?
13: जी बिल्कुल जी। वैसे अपना नाम नहीं बता, नाम बता दीजिए।
12: बुला गए मैम, मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, कोरिजम्बा जिला देवघर झारखंड से।
13: अच्छा,
12: आज सुना दीजिए मैम, पुराने फिल्म है भीगी पलके फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। उससे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिमी की पूरी टीम को, सोनी जी को और हमारे कुछ फ्रेंड हैं, कृष्ण प्रसाद यादव, मदन कौल, पूरन कौल, कमली कौल, जुगल कौल, राजकुमारी, प्रभु कौल, कृष्ण कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
13: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: थैंक यू मैम।
13: वेलकम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मायर MP से।
0: क्या हाल चाल है सुनील जी?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे रहे। अभी बारिश निकल गया तो हम सोचे अभी चलो काम करते हैं और काम बचे थोड़ी देर बात कर लेंगे। अभी टाइम है तो अभी फोन लगाते, फोन भी लग गए मैम।
0: बढ़िया, अभी बारिश हो ही रही
1: मैम। जी जी, अभी बारिश तो चालू है मैम। वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
0: यहाँ पे भी हवा चल रहा है।
1: जी मैम, तो आज ये फरमाइश फिल्म का आना है और गाने के बोल है वो लड़की याद आती है, ऐसा गाने का कुछ बोल है मैम और सुनवाएंगे कि मैं रेडियो जिन जिन दो लोग होते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: तो चलिए आपका गाना ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone din pe bajti hai to kehte hain hello.
13: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और

0: क्या
1: जी।
0: चलिए बढ़िया। और सब बताइए,
1: और सब बढ़िया। तो बता
0: मौसम
1: दीजिए,
0: कैसा है उधर? इधर
1: मौसम तो सही है, हवा चल रहा है।
0: भी वही हाल है, सुबह से भी लाइट नहीं आया है, हवा तेज है ना।
1: जी। वैसे तो इसमें थोड़ा धूप भी निकला हुआ है और हवा भी चल रहा है।
0: गाना बजा दीजिए, थमके बरस मेरे को माटू को घर जाना है।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबसे पहले आपको, रिद्धिया मैम को, सोनी मैम को, भारती मैम को, और अफसर सर को, डायरेक्टर सर जी को, सोनू सर जी को, और मेरे पूरा भाई लोग सुनने, और उन लोगों भी, और मेरा बहन है छोटी वाली करिश्मा, वो भी सुनेगी।
1: सही।
0: आजकल शो में नहीं जुड़ रही है ना करिश्मा, बोल देती है कि फोन लगा देते, फोन नहीं लगता। हम बोलते हैं कि आप लगाएंगे कभी, तो मान लीजिए इतना सारा कस्टमर है, सब लोग तो फोन
1: हाँ,
0: नहीं
1: ये
0: करेगा।
1: तो बात है।
0: ठीक है फिर, और सब बढ़िया
1: जी, बढ़िया। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
1: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
0: ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
0: मैम
1: सब खाना वाना हो गया?
0: ना अभी खाना नहीं हुआ है, सुबह कल उठेंगे तो खाना खाएंगे, अभी आए थे स्कूल से।
1: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
0: 11th में।
1: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
0: अच्छी चल रही है।
1: ओके, चलिए बढ़िया। तो

0: दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सुना दीजिए कोको कोला ला छोड़ी खेसारी लाल का।
0: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: जी मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको
0: जी,
1: और आपको पूरा जितने रेडियो रिंगजिम के उतने आदमी को।
0: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick your phone up.
13: Hello. Jump phone.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9-11। जी हाँ, 8009-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
2: सलाम अलैकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
2: मुझे गाना सुनना है।
14: जी बता दीजिए।
2: गाना सुनना है, अब आएगा मजा बरसा रहा, यही गाना सुनना है, बारिश हो रहा है इसी के लिए।
14: अरे वैसे आपका नाम और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ, गोपालगंज के रहने वाले हैं।
14: अच्छा जी, तो बारिश हो रही है अभी वहाँ?
2: जी जी बारिश हो रही है।
14: अच्छा,
2: यही गाना सुनना है।
14: फिर से बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
2: मुझे गाना है अब आएगा मजा अब बरसात यही गाना सुनना है, अंदाज मूवी का है, यही गाना सुनना है। सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी ने, कमरन भाई, अरमान भाई, आयुष भाई, जगदीप भाई, रिंस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, बिट्टी जी, हिना जी, का जी, सज्जा जी, सभी को सुनाना चाहता
14: हूँ। ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
14: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो फिल्म जी 90.4 FM में।
0: मैडम चंद्रकिशोर जोपाल बोल रहा हूँ, गुजरात से, सूरत गुजरात से रहने वाला मैं, बिहार का हूँ, दरभंगा जिला का। मैडम गाना सुना दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के और गाने की बोल है दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है आपको और जो रेडियो टीवी में सुनते हैं सभी श्रोताओं को। ठीक है मैम, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सोने जा रहा था। मैम एक बात पूछना था, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है रात को वो कब प्ले होती है? क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं रात को सुनता हूँ।
1: प्ले होता है शाम 5 बजे।
0: शाम 5 बजे लेकिन रात को भी चलता है 12 बजे, 11 या 12 बजे के बीच कुछ चालू होता है, तो टाइम क्या है इसका रात को?
1: रात को तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी अभी नहीं आई हूँ, तो उतना नहीं पता है मुझे।
0: क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ ना, तो मैं रात को आज चालू किया था तो रात को चल रहा था आपका ये शो, तो मैं सोचा क्या कि दिन में कॉल लगाऊंगा तो फिर टाइम आपसे पूछ लूंगा कि टाइम कब है इसका रात का।
1: टाइमिंग तो इसका हमको पता है कि 5 से 7 बजे तक बजता है। अब जब आप बोल रहे हैं कि रात को भी बजता है तो शायद उस टाइम भी।
0: हाँ रात को भी बजता है मैम, 1-2 घंटे चलता है रात को भी 12-1 बजे के आसपास।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो मैं सोने जा रहा था तो मैं सो जाऊंगा तो इसलिए सुन नहीं पाऊंगा, तो मैं सोचा रात में ही सुनूंगा।
1: जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू सो मच।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jump on.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
10: यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
11: जी नमस्कार मैडम जी।
12: नमस्कार
11: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मतदे से।
12: जी क्या हाल चाल है आपका?
11: बढ़िया है बहन जी, बरसात हो रही है हमारे इधर, आपके उधर हो रही है क्या बरसात?
12: नहीं इधर तो बारिश नहीं हो रही, बस मौसम बना हुआ है
11: जी। हमारे यहाँ तो रात भर का पानी गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है बहुत जोर शोर से।
12: अच्छा, बारिश का एंजॉय करिए। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
11: जी मैडम जी, सबके काम है मजबूर।
12: ओके,
11: और गाने के बोले बाहर भरा था पानी और अंदर आग लगी है, जिम जिम भरा था बाहर ये पानी अंदर आग लगी है।
12: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है।
11: जी ये आपको है, सबसे पहले डेडिकेट, और अपने गोपाल ओझा जी है ककवासा से, और मांगीलाल जी कंदेल है, मांगीलाल धाकड़ है गोपाल, और गजराज जी लोधी है। तो दीदी प्रोग्राम कब आएगा
12: ये आपका? प्रोग्राम कल आएगा,
11: आएगा ये
12: शाम को ही आएगा।
11: ठीक है,
12: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, बोल रहे थे गाना सुना।
1: जी बता दीजिए।
0: मेरा नाम
1: जी
0: मेरा नाम हो गया विजय दीवाना, करवा पटना से।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम।
1: अब क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है मैम, हम लोग बीबी अप्रैल ग्रुप में काम कर रहे हैं मैम।
1: जी कैसे चल रहा है काम आपका?
0: ठीक है।
1: अच्छा, तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो आज बहुत अच्छा है, कल और आज दोनों दिन अच्छा।
1: बारिश हो रही है?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हवा चल रही है ठंडा ठंडा।
1: यहाँ पे भी
0: जी।
1: गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना मैम सुनना था पवन सिंह का सबसे सुपर हिट गाना है लल्ली पॉप लागे लू।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, पवन जी है, वीरेंद्र जी है, मनोज जी है, जितेंद्र जी है, राजू जी है, देवेंद्र जी है, लालदू जी है, और हमारे पूजा जी है, नेहा जी है, अंकिता जी है।
1: ओके,
0: कितने बजे मिलेगा मैम इस सुनने को?
1: आपको कल मिलेगा सुनने के लिए।
0: कल कितने बजे?
1: 5 बजे, 5 से 7 बजे तक।
0: थैंक यू
1: जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: Jab phone bajte rehte hai to kehte hain hello.
4: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम,
5: मैं रेशमा बोल रही हूँ पठानपति से।
6: जी क्या हाल चाल है रेशमा जी?
5: ठीक है, आपने बताइए।
6: मेरा भी बढ़िया।
5: आप स्वस्थ हो गए? मैं
6: जी। और आपका?
5: हमारा भी हो गया।
6: चलिए बढ़िया है। क्या हो रहा है?
5: खाना बन रहा है।
6: अच्छा, तो बताइए कौन गाना सुनना है आपको?
5: गाना सुनना है दिल में रहने वाला, कभी दिल से नहीं निकलता।
6: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: जी मैम, आपको सुनवाना है और जितना लोग रेडियो सुन रहे सभी किसी का।
6: तो बताइए इधर का मौसम कैसा है?
5: ठीक है मैम, कभी धूप आ रहा है, तेज धूप ऐसा ही हो रहा है, हवा चल रहा है। कल परसों दो दिन बहुत काफी गर्मी था। तो आप?
6: जी जी, अभी तो कुछ राहत है।
5: हाँ अभी कुछ राहत, हम लोग और ज्यादा गर्मी लगता है, भी है ना, बहुत होता है। तबियत ठीक है मैम?
6: जी जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं।
5: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगू 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं प्रभु ठाकुर बगे बजा काटिया गोपालगंज से बोलता
1: हूँ। ओके, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है जी, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं।
0: बारिश हो रही है कि नहीं? अभी
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही। इधर
0: भी बारिश रही है, 4 दिन हो गया 3 दिन हो गया 4 दिन लगभग बारिश होते हैं।
1: अच्छा जी, अभी बारिश नहीं ना हो रही है?
0: नहीं नहीं, इधर भी बारिश नहीं है, बहुत हवा तेज है और धूप भी है।
1: तो है,
0: तो बिजी जा रहा था, उसी समय से आधा घंटा से लगा रहा है।
1: जी जी,
0: अभी जाके लगा है।
1: चलिए, अब लग गया ना?
0: हाँ अभी लग गया, लास्ट में जाके लगा है। 15 मिनट और बचा था तो लग गया। और एक सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन गाने का बोल है, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं तुम्हें कितनी चाहते हम देखते हैं।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: हाँ, तो जो हमारे दोस्त है उनके लिए, एक छतुर कुमार गुप्ता है, टीके राम है, और एक हमारी भाभी है उनके लिए जो अभी बम्बई में रह रही है, सुनीता जी के लिए मेरी कैसे गाने जरूर सुनवाइएगा। ठीक है ना? भारती मैम बोल रही है ना?
1: नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही
0: हूँ।
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: मनोरमा
1: जी?
0: सही बोल रही है मनोरमा जी, भारती ही बोल रही है।
1: आवाज से पता नहीं चल रहा?
0: आवाज से तो पता चल रहा है, सेम सेम आवाज है आपका, हिंदी जैसा ही है। सही, झूठ बोल रही है? वही बोल रही है भारती?
1: नहीं नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही।
0: तो फिर आपसे मेरे पहली बात बारी। चलिए ठीक है,
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगू 90.4 एफएम।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 8570-32042 पे।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड।

0: 5714 06 मीरगंज ब्रांच में 9693101611
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602 भोरे ब्रांच में 8207856404
0: सिवान ब्रांच में 9942071405 मेरवा ब्रांच में 8207856403
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन भी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
6: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार,
6: आप भारती बोल रही हैं?
7: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
6: अच्छा जी मैम, गाना जो ऐसी करते हैं बोलते हैं कौन सा दिन को बनाया जाता है?
7: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
6: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार शुक्रवार।
7: जी
6: मैम, बस आप कैसी हैं?
7: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
6: हम भी ठीक है मैम।
7: तब क्या हो रहा है?
6: अभी पूजा से करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो याद हुआ तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ तो सोचे क्या की आप कॉल करें।
7: जी
6: 2 मिनट बात करें।
7: बढ़िया, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
6: मैम मेरे सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
7: और कहाँ से?
6: हाजियापुर से है मैम।
7: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए
6: मैम। जो हम साथ साथ में के हैं मैया जसोदा तेरा रंगैया।
7: अच्छा हाँ,
6: गाना बजा दीजिए मैम।
7: ओके, ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
6: सबसे पहले आपको आज इतना रेडियो पर सुनते हैं सभी भाई और बहनों को, सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे।
7: जी तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।
7: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
1: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
0: काम हो रहा है।
1: अच्छा,
0: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
1: चलिए अब लग गया ना।
0: हाँ लग गया है।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मेरा नाम,
0: हाँ
1: जी मेरा नाम मनोरमा है।
0: अच्छा
1: जी,
0: आपसे पहली जगह बात हो रही है ना। मैं रेडियो पर बहुत ही सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था, टाइम नहीं मिलता ना।
1: अच्छा, तो फिर गाना बता।
0: सॉन्ग का नाम है छोड़ के ना जाओ या तुझको मैंने दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूं?
1: जी बिल्कुल।
0: पहले मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
1: जी सुनाइए।
0: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दे नतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आंखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। ठीक है, सुना दीजिएगा ये।
1: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी शुक्रिया।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
10: धन्यवाद और आपको नमस्कार।
11: नमस्कार,
10: क्या हाल है?
11: बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
10: हम भी ठीक हैं। आज तो करीब करीब 320 बार से ज्यादा ही डायल किए हैं नंबर।
11: अच्छा जी।
10: हाँ, लगातार मेहनत करते करते आखिर में लग ही गया।
11: अब लग गया ना?
10: हाँ
11: जी। तो अपना नाम बता दीजिए और कहाँ पे?
10: अनिल बात है, छोटपुर से।
11: नाम एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आया।
10: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
11: अच्छा जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
10: बस बढ़िया है।
11: क्या हो रहा है?
10: बस काम पे ही हूँ।
11: अच्छा, तो मौसम कैसा है उधर का?
10: मौसम आज थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, बस बादल इधर से उधर जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, हवा चल रही है थोड़ा रिलैक्स है।
11: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
10: गाना सुना दीजिए, मैंने प्यार किया मूवी आई थी उसी का, लगा लगा लगा रे लगा रे रोग।
11: ये नहीं
10: नहीं पुरानी ही फिल्म है, लगभग 2004 की फिल्म है।
11: अच्छा अच्छा, और ये गाना डेडिकेट भी है किसी को?
10: सारे लिस्नर को और साथ ही साथ आप सभी लोगों को, आपकी टीम में जो भी लोग हैं। जी
11: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
10: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार हिंसा।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी यहाँ लो, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है,
0: बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हो रहा है, कल संडे को। जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश। भगवान
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल हर रोज की तरह अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ये सारी बातें टाइप करना है और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे सेंड करना है। और जैसे आपकी फरमाइश होगी आपके मैसेज हमारे पास पहुँचेंगे, वैसे आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े, टेक्स्ट मैसेज अभी करें और ध्यान रखें कि पुराने गाने के साथ ही इस कार्यक्रम में इंजॉय किया जाता है, तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे। उस मैसेज है और मैसेज पहला पहुंचा हुआ है तो हम शामिल करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय, मैं शिल्पी बिदबरुआ से और मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है तुम तो परदेसी हो परदेसी, डेडिकेट आपको एंड रोशनी सिस्टर सबीना जी, निशा भारती और रेडियो सुनने वाले सभी को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि मैं अनीस यादव विलेज डुमरा यदुवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हूं और खान ग्लोबल स्टूडेंट पटना नीट का स्टूडेंट है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि कैसे हैं, तो एकदम बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले रोहित जी हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया कैसे हैं आप, और मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल बढ़िया है और सॉन्ग की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि सॉन्ग है हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू यादव जी इस मैसेज को पहुंचाते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और पहले गाने प्ले करते हैं, तुम तो परदेसी हो परदेसी।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। हमारे कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665-96 पे। यहाँ पे कुछ आगे भी मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, लेकिन आप कौन, अपना परिचय दें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हम भी जुड़े हैं और हमारे मैडम जी भी सोनो बाबू जुड़ी हैं, तो इन्हें एक मेरे माध्यम से एक सॉन्ग सुना दें, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता, आप दोनों का स्वागत है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स, आपको भी धन्यवाद। आगे मैसेज पहुंचा, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल लीजिएगा। और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, और आगे मैसेज करती हैं और लिखती हैं कि सुपर सॉन्ग, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी, मुझे सुनाने के लिए दिल से थैंक्स सिस्टर। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करती हैं निशा, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अरे फूल है गुलाब का खुशबू लिया करो, मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। बड़ेरिया थाना क्षेत्र बालापुर से जुड़े हुए हैं अनुज कुमार जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में अनुज जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि एके पांडे सरिया गोपालगंज से, और सोनो भाई क्या हाल चाल है, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर जी, मैं निशा पांडे में भी आ चुकी हूँ और हमें भी सॉन्ग सुनना है, अपने पसंद से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, लेकिन अपना पसंद बता देती तो बेहतर रहता, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम को चलाया जाता है और आप सभी से डिमांड किया जाता है कि आप अपने पसंद के ही गाने फरमाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी समय में तो प्लेलिस्ट से हम लोग सुनाते ही हैं, कुछ समय के लिए आपसे मांग की जाती है, तो उस समय भी अपना पसंद बताएं ताकि आपकी पसंद के ही गाने सुनाए जा सके। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, सजदा अंसारी मीरगंज से, और मैं भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, मैसेज तो आते जा रहे हैं लेकिन मैसेज को अब रुकते हैं, गाने के फरमाइश अगली पूरी करते हैं। और इस गाने के फरमाइश हमारे श्रोतागढ़ सिवान से जुड़े हुए हैं अनीस यादव जी हैं, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, वो लड़की बहुत याद आती है, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं मनीष यादव, सतीश यादव, नीतीश यादव, रौनक यादव, अंकिता यादव, अंजलि यादव, नानमी यादव, मिष्टी यादव और मिल्क यादव, एंड इन सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
7: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं राम, गाना सुनना है तू है मेरी किरण। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मंकी सहानी, भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, 3 बार मैसेज किया लेकिन आपने गाना नहीं बजाया। तो बिल्कुल इस बार आपकी गाने हम बजाएंगे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर डुपर सॉन्ग माई नेम इज़ दीपक एंड जेलर, तो आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दीपक एंड जेलर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। अनिश जी मैसेज करते हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है ओहो बहुत दुख है, मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचाए हुए हैं और इस लाइन को भेजे हुए, तो आपकी भी लाइन हम शामिल करेंगे सुनो जी थोड़ा सा देखने के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करते हैं रोहित जी देहरादून से, सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
8: अरे तेरी तो

काफी प्यारा शो रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे रोहित जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना प्ले करने के लिए सुनो भैया दिल से धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सुपर सॉन्ग दलाल मूवी से एमडी नौशाद दरभंगा बाजीतपुर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि बस इसी तरह सुनाते रहिए सर। बिल्कुल सुनाते रहेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे। अगली फरमाइश करते हैं शिव सागर दीवाना जी, और गाने का बोल देते हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तो चलिए शिव सागर जी आपकी फरमाइश प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी, और आप भी एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे

0: नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो फिलहाल हम अगले गाने की फरमाइश पूरी करने वाले मैसेज को बता दें। और इस मैसेज को करते हैं मंकेश साहनी जी भैरोगंज वेस्ट चंपारण से, और कह रहे हैं कि 3 बार मैसेज किया लेकिन आपने गाना नहीं बजाए, इस बार तो गाना बजा दीजिएगा, फिल्म छुपा रुस्तम से कोई भी गाना। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और कोई भी गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है तो अपने पसंद से। और एक और हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है नीसा पांडे, पटना से जुड़ी हैं, और इनके तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है कि अपने पसंद से कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आप दोनों की फरमाइश एक ही गाने के साथ पूरी करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सभी रेडियो रेमछेम 90.4 एफएम पे। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में छुपा रुस्तम मूवी से और सो चल रहा है उसमें इस फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है मंकीश सहानी जी की तरफ से, लिखे हुए हैं कि दिल जीत लिया आपने सर, मेरा पूरा परिवार झूम गया इस गाने पर। बिल्कुल आगे भी छुपा रुस्तम मूवी से ही गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है। हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है AK पांडे और इनके तरफ से गाने का फरमाइश छुपा रुस्तम मूवी का टाइटल ट्रैक की आई है, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी। और यहाँ पे आगे में से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गांव के मुखिया को बुखार था, मैंने मुखिया जी को पैरासीटामोल खिला दिया, अब गांव वाले चंदा इकट्ठा करके मुझे USA भेजना चाहते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ले तो इस ऑफर का लाभ उठाइए सन्नो जी, कम से कम आगे तो किसी को काम आइएगा। तो आपका हमने चिटकुला शामिल कर दिए हैं, आप परेशान ना हो, जब भी समय मिलेगा वैसे वैसे आपकी जो भी चुटकुले हमारे पास पहुंचेंगे एक एक करके शामिल करने की कोशिश रहता है मेरा, लेकिन क्या ही करें बहुत कम समय रहता है मेरे पास। और आगे मैसेज कई पहुंचे और मैसेज को रुकते हैं, यहाँ पे कर मैसेज पहुंचा नाइस शॉ रोशनी, आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने को प्ले करते हैं छुपा रुस्तम मूवी से ही और सुनते हैं हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग छुपा रुस्तम मूवी से दो गाने हम सभी इंजॉय किए और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है रोशनी की तरफ से और गाने का बोल है जब तक ई धरती रही जब तक ई अंबर रही। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं प्रियांशी पूजा एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचा है कि और लिखा गया है कि अस्सलामुअलैकुम क्या हाल है, मेरा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं शबीना और आगे बढ़ते हैं गाने को प्ले करते हैं क्योंकि देखे तो बहुत कम समय है और गाने भी इंजॉय करने हैं, तो एक दो गाने और इंजॉय किया जाए, सुनते हैं हम सभी।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब

0: वाली सीधे हमारा साथ है कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और भोजपुरी में काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक्स। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए थैंक यू, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है के पांडे जी की तरफ से, लिखा गया है कि सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू सोनू भाई। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अंतिम गाने प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के माध्यम से, लवली गुप्ता जी। और इन्होंने गाने की फरमाइश की है मेघारे मेघारे, लता जी और सुरेश वाडकर जी के आवाज़ों में सुनना है, और डेडिकेट है इन्हें जानने पहचानने वाले सभी को। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आगे तो अभी कई गाने के फरमाइश मेरे पास है, लेकिन क्या ही करें, समय जो है हमारा पूरा हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। तो फिर अगले दिन इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। आप सब सुनते रहें रेडियो रमझिम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा
1: करे 9955-9494-53
0: और 9097-6160-02।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 57644।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।

0: झंझट के और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान हैं।
1: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो चुका है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप और इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सभी के लिए प्ले करती हूँ एक शानदार सा गाना। और गाने के बोल हैं, तेरा मेरा है प्यार अमर। तो एंजॉय कीजिए गाने को।

तो अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक सॉन्ग, तेरा मेरा है प्यार अमर। तो सॉन्ग कैसा था आप मुझे बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है शाहबुद्दीन फरीदाबाद से, हरियाणा से, जो लिख रहे हैं, हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनकी गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुंची हुई है, और गाने की फरमाइश है दांत से ओढ़नी दबा के। तो चलिए प्ले करते हैं इनके द्वारा ये सॉन्ग और सुनते हैं इनकी फरमाइश।

और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं रजेश गौतम जी मुंबई से, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: इस गाने के बाद मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और हमारे पास यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है दुर्गेश आजमगढ़ से, जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और गाने के बोल हैं ओ मेरी सोना तुम मेरी होना और मूवी है इश्क तुमसे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और सुनते हैं दुर्गेश जी की फरमाइश को, जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है।

और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं मैसेज पढ़िएगा जरूर। नमस्ते नमस्कार भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम कुमार MP बालाघाट से, स्लोक राइस मिल से, एक गाना सुनाइएगा हल्फा मचा के गई भजन।

बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश थी। और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हाय मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं रंजीत कंकरकूड़ा से, मुझे गाना सुनना है खेसारी लाल जी की आवाज़ में, और गाना है लगा के फेयर एंड लवली जान लेबू का ये पगली। अच्छा, तो चलिए, मैं रंजीत जी के द्वारा फरमाइश की गई गाने को प्ले करती हूँ, और सभी लोग एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम मधेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। भारती जी नमस्कार, कैसी हैं? वेरी गुड आफ्टरनून जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखुल रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय मैम जी, हम कृष्णा मोहन सिंह सिपाया खास से, सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जो कि रहने वाले हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इनको गाना सुनना है और गाने के बोल हैं परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना। और ये गाना सुनाना चाहते हैं बलवंत गुलेट सिंह जी को। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी फरमाइश की तरफ और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना।

और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं केशव राज बिहार बेगूसराय से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और

जो कि लिख रही हैं, हेलो नमस्ते मैम, संध्या गुप्ता मटिहानी मधु, हमको भी सॉन्ग सुनना है, गाना गाना बजा रही हूँ, बारिश वाला गाना बजा दीजिएगा, मेरा भी गाना नहीं बजेगा कि मैम, तो आपका भी गाना बजेगा और बारिश वाला सॉन्ग सुनना है।

और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राधे राधे सिस्टर जी, तो आपको भी राधे राधे। और सुरेश कंडेला जोधपुर राजस्थान से हैं और लिख रहे हैं, आप कैसी हैं, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं आपका चैनल रोज़ सुनता हूँ, मुझे सॉन्ग सुनाया है, तो बिल्कुल आपको भी सुनाया जाएगा।

0: प्यारे से सॉन्ग के बाद मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला मैसेज। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्कार, मैं जितेंद्र दरौली सिवान बिहार, भोजपुरी एफएम भोजपुरी गाना बजाते हैं, इसमें ओनली हिंदी गाना बजाइएगा, मिक्स मत कीजिएगा। मैम मुझे भी गाना सुनना है और गाने के बोल हैं तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, हिंदी सॉन्ग है, बहुत दिन बाद मैं आज गाने के लिए मैसेज किया हूँ, तो प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल चलिए आपकी गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग और गाने के बोल हैं तुझे अपना बनाने की कसम मैंने खाई है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। चलिए

और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, मैं अनीस यादव विलेज डुमरा यदवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हूँ और खान ग्लोबल स्टडीज पटना का नीट का स्टूडेंट हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

हमने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तुम्हें अपना बनाने की कसम मैंने खाई है। तो इसी गाने के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है अनीस यादव जी की तरफ से, और लिख रहे हैं मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। चलिए बढ़ते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं।

फिर हमारे पास यह एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि धनेश कुमार जी दिल्ली के हैं और लिख रहे हैं, अगर कभी उदास हो जाओ तो मेरी हंसी मांग लेना, अगर कभी कोई गम आपके पास आए तो मेरी खुशी मांग लेना, खुदा आपको लंबी उम्र दे जीने के लिए, अगर एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291।

0: जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आगे अगले मैसेजेस की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। मैं रामविलास गनवरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे गाना सुनना है शादी तू ही से होई, शिल्पी राज न्यू सॉन्ग सुनना है। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैम, और आपका इंतज़ार रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो गाने की फरमाइश है, गाने के बोल हैं बर्बादी हुई सॉन्ग, तो चलिए गाना प्ले करते हैं आपका, और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बर्बादी हुई सॉन्ग, जो कि शिल्पी राज की आवाज़ में है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पहुँचे हुए हैं, और यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि ममता कुमारी थावे की रहने वाली हैं और लिख रही हैं, मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने के बोल हैं, मुझे लंबी रात बना ले, अपनी जज्बात बना ले यारा। ओह, तो बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की फरमाइश है। तो चलिए ममता जी के द्वारा सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, और इन्जॉय कीजिए सभी लोग।

और यहाँ धनेश कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं क्या बात है भारती जी, बर्बादी हुई, शादी हुई, तोरे से हमारे चॉइस के गाना बजा दिए, इसीलिए दिल से धन्यवाद। तो एंजॉय करते रहिए।

अभी हम लोगों ने सुना ममता जी की तरफ से बहुत ही प्यारी सी गाने की फरमाइश, जो कि गाने के बोल थे मुझको बरसात बना लो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। संतोष राम मोतिहारी से, जो कि लिख रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारती मैम, मुझे गाना सुना दीजिए, सजनवा बैरी बेल हमार की। मैं मोतिहारी से संतोष राम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो बिल्कुल आपका गाना प्ले करने जा रही हूँ, और इंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी के साथ।

और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम, मैं सुजीत कुमार वस्त्र राजा प्रेमनगर लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, मुझे गाना सुनना है बर्बादी हुई पर शादी ना हुई तोरे से। हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम, मैं सुजीत कुमार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुजीत।

0: आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड़, SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे, मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़, भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9797076575।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, रहीम आलम नरकटिया बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और एक मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल गाना बजाऊंगी, और गाने की फरमाइश है रूठ पर हम। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश।

अरे यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम आज बहुत बढ़िया शो चल रहा है, ऐसे ही लगे रहिए, थोड़ा गाने के साथ हमें बीच बीच में गुनगुना लीजिए, अच्छा लगेगा। तो जी

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, रूठ कर हम जाने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैसेज करने वाले हैं लक्ष्मण जी, जो कि शीतल बरदहा के रहने वाले हैं, और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपको गाना सुनाया जाएगा, और गाने की फरमाइश है जान लेके जान कहवा चली गई लू, और डेडिकेट है अमृता जी को ये सॉन्ग। तो जी बिल्कुल, चलिए आपका गाना प्ले करते हैं पवन जी की आवाज़ में, तो सुनते रहिए ये सॉन्ग।

और यहाँ किशोर सवलनिया जो कि बठिंडा पंजाब के रहने वाले हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं परिवार, हमारे परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी हमारा

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करे 8570-32042 पे।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
0: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
12: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
12: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
13: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
12: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
14: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
12: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
15: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
12: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
16: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
12: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
17: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
12: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचारों की श्रृंखला।
19: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
20: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
21: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
20: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
21: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
20: संपर्क करें 9939365923।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
24: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी

0: गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है, घर खास प्रश्वन्ना है, गाना का नाम है यार दीवाना मर जाएगा, मैं नया लिसनर हूँ तो प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी, और चलिए मैं आपके गाने को प्ले करती हूँ। और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, संदीप शर्मा जी की तरफ से। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, निजामुद्दीन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है। और गाने के बोल हैं, पैरों में बंधन है। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं इनकी ये फरमाइश और एंजॉय करते हैं गाने को।

और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं तो आप सभी को नहीं पहचानती, तो प्लीज़ अपना नाम भी मेंशन करें ताकि मैं आप सभी को जान सकूं। और यहाँ निजामुद्दीन जी की तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं थैंक्स गाना बजाने के लिए। एंजॉय कीजिए अपने गाने।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587। डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं, देखते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: भारती जी ने बोले?
0: हाँ हाँ, आप बता दीजिए आपका नाम क्या है।
1: मेरा नाम विमलेश कुमार शर्मा, बोल रहे हैं
0: जी। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: तो खाना वाना खा गई है क्या?
0: जी खाना तो खा के आई हूँ, अभी लंच करने गई थी। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप सब कैसे हैं? अच्छा तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है। और सॉन्ग किसी को सुनाना है? जी जी तो चलिए मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: और बहुत ही खूबसूरत गाना जो हम लोगों ने सुना, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। तो चलिए इस गाने के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं, जो कि वॉइस लिख रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, मुझे गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस को और देखते हैं कौन सा गाना है।
1: जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, ऐसा होंगे। प्लीज आरती देवी सुनवा दीजिएगा।

जी, बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश आई हुई है। गाने की फरमाइश है, जब जब हम जवां होंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं इनका ये गाना और सुनते हैं।

और यहाँ हमारे साथ अशोक यादव, ग्राम सदरपुर पोस्ट बढ़ड़िया जिला सिवान बिहार। फिलहाल हम सऊदी अरब से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करें 87-894-18-744।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
11: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
11: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: सोनी मैम बोल रही है?
12: जी नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
13: ओके मैम, मुझे गाना सुनना है।
12: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
13: गाना है ये मगहीन है, तुंगे पगली तरह बिना जीवो हम जिंदगी कोना कोना।
12: एक बार और बोल दीजिए।
13: तुंगे पगली तोरा बिना जीवो हम जिंदगी कोना कोना। ये कौन है?
12: सुन रे पगली तोरा बिना।
13: हाँ हाँ, बढ़िया गाना है, नहीं खराब गाना नहीं है।
12: ओके ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
13: आपको सुनाएंगे और जितने लोग सुनते हैं सबको सुनाएंगे।
12: जी जी, तो चलिए मैं आपका गाना प्ले कर दी हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: थैंक यू मैम।
12: वेलकम।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश थी, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। और बाकी लोगों का ये सवाल है कि मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ, और कई सारे कॉल ऑफिस में पहुँच रहे कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं यहीं हूँ। और हर रोज़ अगर मैं ही आऊँगी ऑनलाइन तो फिर भारती जी को कैसे सीखने के लिए मिलेगा। और आज सोचे कि भारती जी आएँ और बाकी की फरमाइशें जो है आज की लाइव शो में भारती जी करें, फिर मैं आऊँगी। और अगली फरमाइश की तरफ फिलहाल हम बढ़ेंगे। और यहाँ शमशेर जी हैं मुंबई से, स्वागत करते हैं आपका। नई मंसारी जी हैं जामतारा से, महमूद अंसारी जी है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संतोष कुमार पटेल जी है सूरत से, स्वागत करते हैं आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, और फरमाइश जो पहुँचा हुआ है, अशोक यादव जुड़े हुए हैं, तो इन्जॉय करिए अपनी फरमाइश को, प्ले कर दिए आपकी फरमाइश को। और गाने की फरमाइश जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग सुन के समझ जाइएगा, सिर्फ राज की आवाज़ में इंजॉय करिए गाने को।

0: फिबुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं। हेलो सोनी जी, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। मेरा नंबर कब आएगा? तो जी, सबका एक एक करके बारी बारी से नंबर आएगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम नमस्कार, राधे राधे, मैं अशोक यादव, ग्राम चंदरपुर, पोस्ट बढ़रिया, जिला सिवान, बिहार से हूँ। अभी फ़िलहाल सऊदी अरब में रह रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल प्ले करेंगे। और बहुत पहले भेज ले बानी मैम, कब तक बाजी? तो आप जी बिल्कुल, और गाना बाजी और वॉइस के माध्यम से यहाँ फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए सुनल जाऊँ वॉइस और देखल जाऊँ कौन से गाने के फरमाइश बा।
1: प्रणाम, राधे राधे, मैं अशोक यादव, ग्राम सदरपुर, पोस्ट बढ़िया, जिला सिवान, बिहार से। फिलहाल मैं सऊदी अरब से जुड़ा हूँ, नियम सिटी से। मैं गाना सुनना चाहता हूँ, ये दिल मत देना मैंने सौतन को, प्लीज मैम बजा दीजिएगा। मैं जुमा जुमा को जुड़ता हूँ बजाने के लिए, थैंक्स मैम।
0: तो चलिए इनके द्वारा प्ले करते हैं ये गाने को। गाना है दिल मत देना मेरी सौतन को, बहुत ही प्यारा सा गाना है और चलिए सुनते हैं।
2: अब बच्चे खुश और मम्मी भी।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग ओ बंगला गाड़ी झुमके कंगना। तो चलिए इस गाने की फरमाइश के बाद चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। जयपुर राजस्थान से एमडी मोहम्मद अंसारी, गाना है खैनी जहरिया तोरे नाम के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए आपके द्वारा प्ले करते हैं इस गाने को और सुनते हैं खैनी जहरिया तोरे नाम के।
1: केहू कहेला मोहब्बत कहर होला, अरे केहू कहेला मोहब्बत जहर होला, केहू कहेला मोहब्बत कहर होला, और हम कहिला जवन तड़पत रहे सदा किनारा खातिर मोहब्बत।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निरा

0: एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं,

हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। अमोद कुशवाहा ग्राम जई छपरा जिला कुशीनगर से, जो कि मैसेज गाने के बोल हैं, जिस गली में तेरा घर ना हो। गाना सुनवा दीजिए मैम। तो जी बिल्कुल, चलिए आपके गाने की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनाते हैं आपका ये गाना। तो अपने गाने को एंजॉय कीजिए, प्ले कर दिए हैं।

तो इसी गाने के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है। दुर्गेश आजमगढ़ से, और लिख रहे हैं उनकी सोनी मैम जी, नमस्ते, आप आवाज़ सुनने के लिए हम बैठे हैं, मेरा गाना चला दीजिए। तो सोनी जी तो अभी नहीं है, कुछ देर के लिए आई थी और चली भी गई, और अभी वो अपने काम में लगी हुई हैं। आज मुझे सारे गाने प्ले करने हैं, तो चलिए मैं ही आपका गाना प्ले कर देती हूँ। और गाना गाने के बोल है, कट जाए रास्ते साथ चलने से। तो चलिए प्ले करते हैं आपका ये खूबसूरत सा गीत, और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और यहाँ मैसेज आ चुका है, दुर्गेश आजमगढ़ के जो कि रहने वाले हैं लिख रहे हैं मेरा गाना बजाने के लिए धन्यवाद मैडम जी। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप, आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और अगर कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूँगी और आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, जो कि नया मूवी अभी जो निकला नहीं है, मूवी है टॉक्सिक। तो चलिए प्ले करते हैं इस गाने को और इन्जॉय कीजिए, और मैं अभी आप सबसे विदा ले रही हूँ।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
3: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: डॉन बात चलो।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434।

0: हेलो
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM
1: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
0: में। जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। मौसम में तो 2 दिन से ठंडापन लगा है। हाँ तो
0: तो अच्छी बात है।
1: हाँ मौसम में बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात भी है। अपना सब हम भूल गए जब से आपसे बात हुई।
0: हाय
1: मौसम में तो बदला हुआ है।
0: जी,
1: हमको गाना सुनवाइएगा, बादल को बरसने दे, बिजली को चमकने दे।
0: अच्छा। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी?
1: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर गुमनिया के कन्हैया प्रसाद को भी सुनवा चाहता हूँ।
0: जी
1: और सब सुनाइए, आपका ठीक है ना? सब खाना पानी हो गया?
0: जी, हम सभी ठीक हैं और हमारा खाना पानी भी हो गया है।
1: हाँ हाँ सर ठीक, गाना सुनवा दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते
1: हाँ
0: रहिए।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
10: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
13: नमस्कार जी।
12: नमस्कार,
13: भारती मैम बोल रहे हैं जी।
12: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: दिल्ली से उमा शंकर मिश्रा। कैसा मौसम है वहाँ का?
12: बस थोड़ा बहुत धूप है, थोड़ा बहुत छांव है।
13: नहीं, यहाँ तो बारिश हो रही है कल से दिल्ली में। आज भी बारिश हो रहा है। तो मैम एक गाना सुनना था।
12: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
13: ओ हाथी मेरा साथी फिल्म का गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के।
12: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
13: पहले आपको, सोनी मैम को और जितने लिसनर है सबको, खास करके रामा जी प्रसाद को।
12: जी जी बिल्कुल। तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
13: थैंक यू मैम।
12: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: राधे राधे मैम, चंद्र
1: राधे राधे जी,
0: किशोर के बाद बोल रहा हूँ सूरत गुजरात से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम। वैसे तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ, दरभंगा जिले का। गाना सुना दीजिए मैम। फिल्म का नाम है कसूर,
1: गाने के बोल।
0: गाने की बोल है कितना बेचैन होके तुमसे मिला, उदित नारायण की आवाज में सॉन्ग है
1: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सॉन्ग डेडिकेट है आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी लिसनर को।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमर जेड पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: थैंक यू, मैं अनिल बोल रहा हूँ और नमस्ते आपको।
7: नमस्ते,
6: कैसी हैं?
7: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: हम भी ठीक हैं। बारिश हो रही है?
7: हाँ हाँ, बारिश तो यहाँ हो ही रहा है।
6: हाँ, तो हमारे यहाँ भी पूरा मतलब शहर तो जलमग्न हो गया है और गाँव में भी बारिश उतना हुआ है जितना में खेती बाड़ी का काम हो सके। बहुत बढ़िया बारिश हुआ है
7: जी। यही तो अच्छा है कि सभी का खेती उसी में निकल जाएगा।
6: पाइप तो नहीं ढोना पड़ेगा ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इस बीच इस बारिश के मौसम में थोड़ा अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वायरल फीवर या फिर डेंगू वाला बुखार भी हो जाता है लोगों, तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी इसमें।
7: अब कहीं कहीं पानी इकट्ठा होगा तो होगा ही।
6: हाँ, इसके लिए बचाव के लिए अपने घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, मच्छरों से बचना है और वायरल फीवर से बचने के लिए हाथों की साफ सफाई और संक्रमित व्यक्ति से और संतुलित आहार और पर्याप्त आराम भी जरूरी है। और गाना सुनना है, एक शिल्पी राज का गाना आया था 2-4 साल पहले, वही दहता कजरा के धार बदरवा धीरे बरसा हो, यही वाला गाना प्ले कर दीजिएगा और सुनवाना है आपको और सोनी जी को, मनोरमा जी को और सोनू सर, बाकी जितने भी लिसनर्स हैं सभी लोगों को।
7: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं
6: जी। थैंक यू मैम।
7: रेडियो 90.4।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: मेरा नाम हो गया अलाउद्दीन। कैसे हैं मैडम?
1: आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: ठीक है मैडम, अपना बताइए। और आसिम मैडम बोल रहे हैं क्या?
1: हाँ, से हैं आप?
0: जी अभी तो गोपालगंज में है।
1: मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: इधर कुचाई कोर्ट में।
1: अच्छा, क्या करते हैं आप?
0: रहते हैं मतलब पूर्णिया में। ठीक है, मेरा घर पूर्णिया में। यहाँ आए हैं सर, हम सब आए हैं पढ़ाई करने के लिए। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। और बारिश हो रही है मैडम? कल
1: बारिश तो हो ही रहा है, बारिश हो रहा है, कभी हो रहा है तो कभी खुल रहा है, लेकिन लगातार बारिश हो रहा है।
0: बारिश हुई है, बारिश होती रहती है। पता नहीं हो गया मैडम?
1: हाँ, हो गया। आप अभी कहा हो गया तो बता दीजिए, फोन पर गाना सुनिएगा, इस बार बता दीजिए, इस बार सुन लीजिएगा।
0: हाँ तो ये बारिश वाला गाना है ना, एक जब कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना, ये वाला सॉन्ग।
1: जी
0: ये वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ तो आप है और सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, किसी का नाम नहीं लिए है। ऐसे कहेगा तो मेरा नाम नहीं लिया, उसका नाम ले लिया, किसी सबको ले लिए। इसके बारे में
1: ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
0: पूरी गाना सुना है मैडम, इसे मजा नहीं आता है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो अधूरा गाना रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। पूरी गाना सुनाइए, अच्छा रहता है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
10: जी धन्यवाद। नमस्कार।
9: नमस्कार, नाम
10: कौन
9: बता
10: रहे हैं
9: जी?
10: आप कौन बोल रही हैं?
9: मैं भारती हूँ
10: जी। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ।
9: और कहाँ से?
10: मुंबई से बोल रहा हूँ।
9: अच्छा,
10: और सब बताइए कैसे, क्या सब ठीक है ना?
9: सब ठीक है, आप बताइए आप सब कैसे हैं?
10: अच्छे हैं, स्वस्थ है। बारिश हो रहा है बिहार में?
9: हाँ बारिश हो रहा है इधर,
10: बाढ़ आ गया है मुंबई।
9: अच्छा हाँ, उधर तो होते ही रहता है, बहुत ज्यादा होता है बारिश।
10: इधर बारिश
9: लैंडस्लाइड भी हुआ है कुछ कुछ जगहों पे।
10: उधर हुआ है, पुणे में हुआ है,
9: हिमाचल
10: प्रदेश में हुआ है, असम।
9: चलिए बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
10: कौन सिंह का कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहा है, अचानक ही फोन लग गई।
9: अच्छा तो कौन सिंह का सॉन्ग?
10: हाँ कौन सिंह का अच्छा वाला गाना सुना दीजिएगा नया।
9: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट रहेगा?
10: जी आपको डेडिकेट रहेगा और सभी रेडियो इंजिन सुनने वाले लिस्टनर को डेडिकेट।
9: ओके चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 एफएम।

0: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
0: जी मैं सबकी ठाकुर बजाय बाजार का गोपाल बच्चों।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: आरती जी बोल रही हैं, बारिश हो रही है आज?
1: बारिश तो हो ही रहा है
0: गोपाल बच्चे में, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम आए हुए हैं जलालपुर में, यहाँ पे एमए का एग्जाम है हमारे भाई पापा जाने के लिए आए हैं। अभी बारिश में ही बैठे हैं दुर्गा मंदिर के बाहर, बहुत बारिश हो रही है एक घंटा डेढ़ घंटा से। समय हो गया था इसीलिए फोन लगा रहे थे बार बार, अब जाके लगा है बिजी था फोन।
1: चलिए कोई नहीं,
0: कोई तो हम भी ट्राई कर रहे थे कि कभी तो लग जाए। बोल रहे हैं मैडम जाना है, करवा दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: आज जो फिल्म का नाम है रात ही रना आएगी, और जाने का बोल है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी फिर तो जुदा अपनी बाहों से होने ना है।
1: ओके, और सॉन्ग की टिकट डेट भी है?
0: हाँ, ये पसंद मेरी वाइफ लिए है नीलम के लिए। और जितने भी श्रोता है जो पुराने सॉन्ग को सुनना चाहते हैं उनके लिए।
1: ओके,
0: और मैं आपके लिए भी रिकमेंड करना चाहूंगा इस गाने को, एक बार आप भी साफ हमेशा सुनती है, ये सॉन्ग आपके लिए भी डेडिकेट है।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
15: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
16: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
17: Break ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
19: अस्सलाम वालेकुम।
18: वालेकुम अस्सलाम,
19: क्या हाल है?
18: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
19: मेरा भी ठीक है।
18: नाम भी बता दीजिए।
19: काजिया नवादा से।
18: तो
19: नाश्ता हो गया?
18: हाँ, नाश्ता तो हो गया है।
19: आज सब बढ़िया है ना?
18: मेरा ठीक है। आप सब अपना बताइए, आप सब कैसे हैं?
19: हम लोग भी बढ़िया है। आज मेरे भैया की हल्दी मेहंदी है।
18: अच्छा जी, सब तो बहुत बढ़िया है।
19: बारिश सब मेहनती कर दिया।
18: अभी उधर बारिश हो रहा है क्या?
19: हाँ, इधर बारिश हो रही है। उधर नहीं हो रही क्या?
18: नहीं, इधर भी हो ही रहा है। चलिए फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा। तो आज कह रही हूँ हल्दी मेहंदी का सॉन्ग नहीं सुनिएगा।
19: सुना दीजिए अपने साइड से कोई सा भी।
18: अच्छा जी, आती है ना भैया का हल्दी है?
19: हाँ, मेरे भैया का हल्दी है, उसी के साइड हो रहा है बिखेरवा में।
18: अच्छा, नाम क्या है आपके भैया का?
19: इम्तियाज आलम। अपने पसंद से अच्छा वाला गाना बजा दीजिए। सबसे पहले आपको और सोनू सर को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को, सुनने वाली और लिस्नर को सुनवाना चाहती हूँ। कब तक बज जाएगा?
18: कोशिश करते हैं कि आज ही के दिन बज जाए।
19: ठीक है ठीक है, तब तो मैं तो रेडियो सुन रही हूँ, कितना भी काम क्यों ना मेरा रेडियो कर रहे थे। कोशिश कीजिएगा आज ही का।
18: जी जी बिल्कुल। ओके, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
19: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
1: हाँ जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मांगी लाल ढाका बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है मैम, खेती बाड़ी में लगी हुई है मक्का बोली। मैं मक्का बो रहा हूँ, किसान है।
0: बढ़िया है, बारिश नहीं हो रहा है क्या उधर?
1: हाँ बारिश हो रही है मैम, गुना MP में बारिश आ रही है।
0: चलिए सबसे बढ़िया
1: है, आपके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
1: आज? मुझे सुनना है आग और शोला।
0: कौन सा?
1: आग और शोला प्लम का गीत है।
0: कौन सा गीत?
1: ना गीत है एक बारिश ऊपर गिर है, बरस आगे बरसा, आगे बरस बरसा है पानी।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी मैम। क्या
0: सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ जी मैम।
0: बता दीजिए।
1: हमारे मित्र हैं गोपाल ओझा जी हैं, अमर सिंह भील हैं, सुनील साहू जी हैं, गजरा सिंह लोधी जी हैं और लोकेन वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं।
0: जी तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी मैम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18-744।
12: प्रसाद क्लिनिक।
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
15: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
14: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 99393-65923।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजा रोग रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 7075763100 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-7146-164।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
14: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
12: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
14: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में 5 लाख शिक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी। 29 जुलाई से शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में डिजाइन की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से हर भारतीय गौरवान्वित हुआ है।
1: भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर एक एक हिंदुस्तानी को गर्व हो। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शुरू होने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया के कुछ देशों में चलने वाली ट्रेन से काफी बड़ी है।
1: दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में यह शुरुआत पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। भारत में ही डिजाइन की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। जिंद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ यह ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार सहित देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसमें मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला भागलपुर जिले का शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। बिहार सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वम एआई और कोरोवर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य को एआई आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी। इस समझौते के तहत नागरिकों को हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में एआई आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों को मौसम, फसल, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त हो सकेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। इधर बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की।
4: हम सभी का सामूहिक दायित्व है सदन की गरिमा, मर्यादा और संसदीय परंपराओं को सर्व प्राथमिकता दें। पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र के दो सत्र असंभव, विचारों और मतभेद स्वाभाविक। इन लोकतांत्रिक संवाद, शालीनता और मर्यादा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बरकरार रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत इस बार स्थानांतरण की प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। चयनित शिक्षकों का स्थानांतरण 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पहलें और नए नियम लागू किए जा रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि देश में चुनाव संविधान, निर्वाचन संबंधी कानूनों और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कराए जाते हैं। अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सही और तथ्यात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया है कि एनडीए अपनी जीती हुई सीट फिर से जीतेगा।
1: पूरी तैयारी जैसे तैयारी होती है, घर घर लोग जा रहे हैं, अपने वोटरों को समझा रहे हैं, एनडीए का काम को जानकारी दे रहे हैं, जीता हुआ सीट है फिर जीतेंगे।
0: वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव में मुख्य विपक्षी दल राजद मैदान में कहीं भी नहीं है। श्री पासवान ने कहा कि चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
2: मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में न केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, न बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त, तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें राजद ने कोई सम्मान नहीं दिया। श्री सुमन ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि राजद संगठन में जंगल राज व्याप्त है।
3: देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी जिस विचार के व्यक्ति हैं और जितना अनुभव है और उनके पास, हम समझते हैं कि औसी पार्टी में इतना दिन टिकी गए बहुत बड़ी बात है। हमें तो आश्चर्य होता है कि कैसे उस तरह के व्यक्ति उस कल्चर में रह रहे हैं जहां जंगल राज की बात होती है, जहां दूसरे तरह की बात होती है, तो आज उनको सबक मिला है।
0: राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
4: राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से योगापट्टी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। आज भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। बाढ़ से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित पंडई नदी में नहाने के दौरान एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत तालाब में डूबने से एक श्रमिक की मौत हो गई। सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मलमलिया में कार्यरत शिक्षक श्याम सुंदर मंडल से जमील दिनाने के नाम पर 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगंज के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और दिघल बैंक थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 52 पेटी चाइनीज सेब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर बक्सर जिले के बीर कुमार सिंह चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर से 307 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के रोहुआ हाई स्कूल के समीप नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन के रिसाव से 5 छात्र बेहोश हो गए। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद में स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में 5 लाख शिक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी। 29 जुलाई से शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: All right.

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM Z पर।
14: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अभय। आज हम बात करेंगे उस पहले पोषण की जो हर नवजात को उसकी माँ से मिलती है, माँ का दूध। जैसा कहा जाता है, माँ का पहला दूध बच्चे का पहला टीका। इस कहावत में ही छुपा है बच्चे की सेहत का असली राज। दोस्तों, आपने कई अभियान सुने होंगे, जान है तो जहान है, हम दो हमारे दो, दो बूंद जिंदगी के, एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। और अब सुनिए माँ का पहला दूध सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी अपनी टीकन भाभी के संग।
15: बिल्कुल, हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को जागरूक बनाना कि माँ का दूध हर नवजात का पहला और सबसे जरूरी पोषण होता है। बचपन से कहावत सुनती आई हूँ, पहला सुख निरोगी काया, और इस निरोगी काया की नींव माँ का दूध ही रखता है। जब मेरा स्वास्थ्य सिंह पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा सबसे पहले माँ का दूध दो, वही बच्चे की पहली वैक्सीन है। वो पीला गाढ़ा दूध जो शुरुआत में आता है कोलोस्ट्रोम, वही सबसे ताकतवर होता है।
14: बिल्कुल सही, कोलोस्ट्रोम में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को सर्दी, खांसी, दस्त, निमोनिया जैसे रोगों से बचाते हैं। ये दूध न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है बल्कि दिमाग को भी तेज बनाता है। जैसा एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर बचपन में अच्छा पोषण मिले तो बच्चा न सिर्फ स्वस्थ होता है बल्कि अच्छा सोचता और समझता भी है।
15: सही कहा, अब यही देख लीजिए, मेरा स्वास्थ्य सिंह अब हर बार स्कूल में फर्स्ट आता है और खेल में भी आगे है। एक बात और, नन्ही मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल वैसे ही माँ के दूध में होता है छोटा सा घूंट लेकिन ताकत भरपूर। जो माँ अपने बच्चे को सही समय पर स्तनपान कराती है वो बच्चे के अंदर बल, बुद्धि और चमक तीनों भर देती है।
14: क्या खूब कहा भाभी आपने। सुनने वालों के लिए हम बता दें कि स्तनपान से न सिर्फ बच्चा तंदुरुस्त होता है बल्कि माँ के लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे इससे माँ की वजन जल्दी कम होता है, बच्चे रानी यानी गर्भाशय जल्दी सामान्य हो जाती है, और सबसे खास स्तन और गर्भाशय में कैंसर का खतरा कम होता है। माँ और बच्चों का भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है।
15: बिल्कुल सही, और जो माँ बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराती है उसे अगला गर्भ भी देर से ठहरता है, यानी ये एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह काम भी करता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी खेल कूद से तन बने, पढ़ाई से मन, और तन की नींव माँ का दूध ही है।
14: बिल्कुल, और शोध बताते हैं कि जो बच्चे 2 साल तक माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग तेज, शरीर मजबूत और व्यवहार अच्छा होता है। जैसा एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, मतलब पालन पोषण में जो देंगे वही लौट कर मिलेगा। अगर बच्चा सही पोषण से पलता है तो वो जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलेगा।
15: और देखिए, जब माँ को सहयोग नहीं मिलता तो वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, दूध कम बनने लगता है। माँ को जरूरत होती है आराम, अच्छे खाने और अपनों के सहारे की, वरना माँ अकेली सब कुछ नहीं कर सकती।
14: एकदम सही, हमारे समाज को चाहिए कि हर माँ को दूध पिलाने में मदद मिले, घर पर, काम की जगह पर और अस्पताल में भी। ये हफ्ता हमें याद दिलाना है, हर बच्चा माँ का दूध पाने का हकदार है और हर माँ का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
15: बहुत सी माओं को लगता है कि अगर दूध कम आ रहा है तो वो माँ होने में फेल हो गई, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी तनाव, बीमारी या थकावट से दूध कम बनता है, पर समय पर सलाह, पौष्टिक खाना और मन का चयन हो तो दूध फिर से आने लगता है।
14: एक और जरूरी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। कभी कभी बच्चे भी हमारे इशारे से हमें बताते हैं कि वो खुश नहीं है, भूखे हैं या पेट खराब। हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, प्यार से उनका साथ देना है।
15: और माँ का दूध सिर्फ पोषण नहीं, ये प्यार, सुरक्षा और अपनापन है। जब बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है तो वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है।
14: बिल्कुल भाभी, और हम सब जानते हैं नैनीहाल देश का भविष्य है। अगर हमने बच्चों को बचपन में प्यार, सेहत और पोषण दिया तो वो बड़ा होकर अच्छा समाज और देश बनाएंगे।
15: एक कहावत और सुनिए, गुड़ खाए गुड़गुड़ाए फिर बोले मीठा मीठा, मतलब सिर्फ खाने से नहीं बचपन में मीठे बोल, प्यार और सही परवरिश भी जरूरी है।
14: आज की बात से हमें ये समझ आया कि माँ का दूध बच्चों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टीका है, और स्तनपान सिर्फ माँ का नहीं पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह अभियान चलाया जाता है।
15: हाँ, माँ के दूध से बढ़े बल, बुद्धि और चमक, ये सिर्फ कहावत नहीं हकीकत है। और इस साल स्तनपान सप्ताह की थीम है स्तनपान को करें प्रोत्साहित, कामकाजी माताओं को दे सहारा।
14: भाभी, इस थीम को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आया है कि आजकल बदलते जीवन शैली में कामकाजी महिलाएं शिशु को अपना दूध नहीं पिला पाती, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है?
15: बहुत अच्छा सवाल है आपका। आजकल की बदलती जीवन शैली में जब महिलाएं ऑफिस या बाहर का काम करती हैं तो उनके लिए शिशु को अपना दूध, माँ का दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जैसे दूध निकालकर स्टोर करना, माँ अपना दूध ब्रेस्ट मिल्क साफ सुथरे तरीके से निकालकर एक साफ बोतल, कटोरी, ग्लास में स्टोर कर सकती हैं। इसे फ्रिज में 6 से 8 घंटे तक रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बच्चे को पिलाया जा सकता है। परिवार की मदद, जब माँ ऑफिस में हो तब घर में दादी, नानी या कोई भरोसेमंद सदस्य बच्चे को स्टोर किया गया दूध चम्मच या बोतल से पिला सकते हैं। काम पर मातृत्व सुविधाएं। कुछ ऑफिसों में माताओं के लिए फीडिंग रूम होते हैं, वहाँ माँ थोड़ी देर में जाकर दूध निकाल सकती हैं। बच्चे के लिए समय निकालना, अगर संभव हो तो माँ काम के बाद बच्चे को सीधा स्तनपान कराए ताकि उसका माँ से जुड़ाव बना रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इन तरीकों से कामकाजी महिलाएं भी अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने की जिम्मेदारी निभा सकती हैं।
14: अरे वाह भाभी, आपने तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक सही और आसान तरीका बता दिया।
15: और एक खास बात, जो माँ HIV पॉजिटिव है उन्हें भी अगर डॉक्टर सलाह दें तो सावधानी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है।
14: टीकन भाभी, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ऊपरी दूध शिशु को पिलाने के लिए नुकसान क्या है।
15: हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब माँ का दूध नहीं दिया जाता और शिशु को ऊपरी दूध जैसे गाय का दूध, डिब्बा बंद दूध, फॉर्मूला दूध आदि दिया जाता है तो इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं, जैसे पाचन में कठिनाई। ऊपरी दूध भारी होता है जिससे बच्चे को गैस, कब्ज या दस्त हो सकते हैं, एलर्जी का खतरा। कुछ बच्चों को गाय या फॉर्मूला दूध से एलर्जी हो जाती है, जैसे त्वचा पर लाल दाने, उल्टी या सांस लेने में परेशानी। संक्रमण का खतरा, अगर दूध बनाने के बर्तन या बोतल साफ नहीं हो तो बैक्टीरिया से संक्रमण हो सकता है जिससे बच्चा बीमार पड़ सकता है। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, माँ के दूध में प्राकृतिक इम्यूनिटी देने वाले तत्व होते हैं जो ऊपरी दूध में नहीं मिलते, इससे बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। अत्यधिक वजन या कुपोषण, माँ बच्चे का कम जुड़ाव, जब बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो उनका भावनात्मक जुड़ाव भी थोड़ा कम हो सकता है।
14: टीकन भाभी, क्या कोई सच्ची घटना शेयर करना चाहेंगी जो स्तनपान से जुड़ी हो?
15: जरूर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी पड़ोसन रानी की बेटी हुई, पर रानी को दूध भरपूर मात्रा में नहीं हो रहा था तो रानी की सास ने बोतल का दूध पिलाने को कहा। ये बात रानी ने मुझे बताया तो मैंने रानी की सास को समझाया। मैं रानी के साथ बैठी और उसके बच्चे को दूध पिलाने में मदद की, इससे रानी के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जगा। अब रानी को दूध भी भरपूर आने लगा है, रानी दूसरी माओं को सलाह भी देने लगी है।
14: वाह, यही तो असली बदलाव है, जानकारी से आत्मबल। अच्छा भाभी, एक और बात, स्तनपान शिशु को कराने के लिए सही तरीका भी है क्या?
15: हाँ, चार सही तरीके हैं। माँ को आरामदायक मुद्रा में बैठाना चाहिए, बच्चा और माँ का पेट आपस में सटा हो, बच्चा पूरे स्तन को मुंह में ले, पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलवाएं। और ध्यान रखें, शहद या गाय का दूध छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, शहद से बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है, और गाय का दूध बच्चों के लिए भारी होता है, उससे एलर्जी या पेट की तकलीफ हो सकती है।
14: वाह भाभी, इतनी सटीक जानकारी और इतने सरल तरीके से आप ही दे सकती हैं। एक और बात भाभी, सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देती हैं?
15: बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अधिकृत संस्थानों में प्रसव बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें सिजेरियन डिलीवरी भी शामिल है यदि जरूरत हो तो। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रख सकें। INCF इंटेंसिव न्यूट्रिशन कैंपेन, यह अभियान भारत सरकार द्वारा मल्टी सेक्टोरल पोषण सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है जो खास तौर पर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कुपोषण की रोकथाम और नियंत्रण, जनमानस में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 0 से 6 साल तक के बच्चों, किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को उचित पोषण सुनिश्चित कराना, समुदाय के साथ मिलकर व्यवहार में बदलाव लाना। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यह सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है ताकि माँ के दूध के महत्व को बताया जा सके और स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य है लोगों को स्तनपान के फायदों के बारे में जागरूक करना, स्तनपान को समाज में सम्मानजनक बनाना, माताओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदाय और नीति निर्माताओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। आंगनबाड़ी और आशा बहनें भी घर घर जाकर सही सलाह देती हैं।
14: सरकार हमारी माँ बहनों के लिए कितना कुछ सोचती हैं, यह सुनकर मन को सुकून मिलता है।
15: ये बात तो सही है, लेकिन सेहत और सुरक्षा की ये सारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब हम खुद आगे बढ़कर इसका फायदा उठाएंगे। गर्भवती महिलाएं समय पर जांच कराएं, टीकाकरण कराएं, नवजात को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दें, अच्छा खानपान और पोषण अपनाएं, सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का पूरा लाभ लें, और जब आशा बहन या आंगनबाड़ी दीदी घर आए तो उनकी बात ध्यान से सुने।
14: बिल्कुल सही, स्तनपान माँ का पहला उपहार। याद रखिए, माँ का दूध हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। माँ का दूध हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। सही जानकारी से ही बनेगा स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ समाज।
15: और हर माँ को ये जानना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है। माँ का दूध ही बच्चे की पहली दवा है, इसीलिए स्तनपान को अपनाइए, बच्चे की जिंदगी को सुरक्षित बनाइए।
14: तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस संदेश को जरूर आगे फैलाइए। माँ का दूध हर बच्चे का अधिकार है, और इस स्तनपान सप्ताह आइए हम मिलकर हर माँ को सहयोग और हर बच्चे को स्नेह देने की कसम ले। सुनते रहिए सेहत सही लाभ गई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।
13: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
16: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
17: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
18: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
14: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
19: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
20: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं 1 पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध 1 पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा 1 पद, प्रबंधक अकादमिक 1 पद, प्रबंधक प्रत्यायन 1 पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना 1 पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 और 2 के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 30 पद हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक fr.iitism.ac.in पर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर एथलेटिक्स एक पद सहायक प्रोफेसर निशानेबाजी, एक पद सहायक प्रोफेसर भारोत्तोलन, एक पद सहायक प्रोफेसर बैडमिंटन, एक पद सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, तीन पद सहायक प्रोफेसर खेल मनोविज्ञान, एक पद और सहायक प्रोफेसर खेल पोषण, एक पद। इसके अतिरिक्त गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल एक पद और जनसंपर्क अधिकारी एक पद। विस्तृत अधिसूचना राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.nsu.ac.in। आवेदन 9 अगस्त 2026 तक किया जा सकता है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 1 के 2 पदों को भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
21: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555-94-93
0: और 90-97-61-60-02।
22: ओम नमः शिवाय।
23: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
22: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
23: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
22: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
23: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
22: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
23: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
22: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629335 38।
23: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
22: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
23: बोलबम हर हर महादेव।
24: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: All right.

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: नमस्कार,
11: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
10: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
11: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
10: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
11: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
10: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
11: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
12: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
11: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
10: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
11: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
13: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
11: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में

0: संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की 4th नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और

0: चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
13: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
16: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, राशन कार्ड को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड का हुआ गठन, शराब कारोबारियों में हुई गोलीबारी को लेकर 2 आरोपी गिरफ्तार, शराब के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और 1 महीने में हुई 801 लोगों की गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। नए राशन कार्ड निर्माण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सदर डॉक्टर प्रेरणा सिंह के निर्देशन में अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों के महादलित टोलों में पहुंचकर पात्र लाभुकों से नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त किया। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को चिन्हित करना है जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अधिकारियों ने लाभुकों को राशन कार्ड के महत्व एवं आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी दी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने के लिए लाभुकों को प्रेरित भी किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का त्वरित सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कर पात्र लाभुकों का राशन कार्ड शीघ्र निर्गत कराएं, ताकि कोई भी योग्य परिवार सरकार की खाद्य सुरक्षा एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मिशन 13 अगस्त के तहत अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है और लक्ष्य की 100% प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभियान के माध्यम से अधिक पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने महिला सुरक्षा और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस दीदी टीम यानी अभया ब्रिगेड का गठन किया है। यह टीम स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी और जागरूक करेगी। साथ ही ऑपरेशन विधि पालक के तहत मंचलों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके से पुलिस अभियान चला रही है और महिलाओं तथा बच्चियों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रति भी महिलाओं को अलर्ट किया जा रहा है। जादोपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर 2 गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद, झड़प और गोलीबारी को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार टेंगराही गांव के पास गंडक नदी के किनारे पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन और जादोपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में घटनास्थल की घेराबंदी की गई। पुलिस के वाहन को आता देखकर मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी झाड़ियों और आसपास के जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पप्पू यादव और अखिलेश यादव के रूप में हुई है। दोनों भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने अवैध शराब की खरीद बिक्री को लेकर कन्हैया यादव और अमरजीत यादव के गुटों के बीच विवाद की बात बताई है। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर घटनास्थल के पास से झाड़ियों से 22 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है। वहीं FSL की टीम ने भी घटनास्थल पर जांच पड़ताल किया है। जिंदा कारतूस और एक खोखा भी जब्त किया गया। गया है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोटिया थाना की पुलिस ने 59 लीटर देशी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जमुनाहा हाई स्कूल के पास छापेमारी की और यहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी 2 मोटरसाइकिल और 59 लीटर शराब भी जब्त की गई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दिव्यांशु कुमार गोस्वामी, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के माधोमठ का रहने वाला है, और मुमताज अंसारी, यह कटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और साथ ही तीसरा छोटू यादव, यह परशुराम यादव का पुत्र है और विजयपुर के बंधौरा का निवासी है। तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 355/26 दर्ज किया गया था और हत्या के प्रयास में इन्हें आरोपी बनाते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें ये फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में छापेमारी की, जहां से भूपेंद्र पांडे, धर्मेंद्र पांडे, ये दोनों बमोनिया टोली के निवासी हैं, और तीसरा दीपक तिवारी, यह बच्चा तिवारी का पुत्र है और शंकरपुर का रहने वाला है। सभी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के ही रहने वाले हैं। सभी को आज गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए 1 महीनों के अंदर अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल 801 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताया जा रहा है कि इसमें हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास में हुई गिरफ्तारी और अन्य आपराधिक घटनाओं तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर हुई गिरफ्तारियां शामिल हैं। साथ ही इसमें डकैती, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कांड के भी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं रोड जाम और पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान कई शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से हजारों लीटर शराब भी जब्त किया गया है। नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अजय कुमार और दूसरा सुनील कुमार, ये दोनों हरखुआ वार्ड नंबर 23 के निवासी हैं। इन आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला नगर थाने में दर्ज था और ये लोग फरार चल रहे थे, तभी पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 692/26 में इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार शराब तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 303 लीटर शराब मिली है, जिसमें एक आरोपी अजय कुमार राम नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा विकास कुमार, यह माझागढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है। इधर उत्पाद पुलिस ने बेतिया के रहने वाले एक शराब तस्कर गोविंद शाह को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी भी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राशन कार्ड को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस दीदी अभिया ब्रिगेड का हुआ गठन। शराब कारोबारियों में हुई गोलीबारी को लेकर 2 आरोपी गिरफ्तार। शराब के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और 1 महीने में हुई 801 लोगों की गिरफ्तारी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा, मिला ही नहीं
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
20: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: नमः शिवाय।
22: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
21: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट
0: थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
22: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
22: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
22: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
22: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
22: बोलबम, हर हर महादेव।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
23: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
24: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
23: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
24: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
23: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
24: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
23: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हर रोज़ की तरह सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, आप लोग तो मालूम है कि पुराने गाने के लिए यह कार्यक्रम चलता है, तो आप सभी से मेरा भी निवेदन है कि पुराने गाने के लिए ही कार्यक्रम है तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे। और कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैसेज के साथ शुरू करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो जी, गाना सुनना है अमृता कुमारी सरिया, वार्ड नंबर 4 से और नदिया के पार मूवी से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सुरेश जी तिरबिरवा से मैसेज करते हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सुरेश जी, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, माय नेम इज़ दीपक एंड जेलर। तो हमें लगता है दीपक जी आपकी फरमाइश हम इस सप्ताह पूरी किए हैं, सो आप अपने मैसेज को देख लें और फिर यदि नहीं पूरी हुई होगी तो पूरा करने की कोशिश रहेगा, लेकिन हमें तो लगता है कि पूरा किए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली गोपालगंज से और ये गाना सुनना है, आया आया प्यार का जमाना। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सफरोज जी, गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, माई नेम इज़ शाहजहाँ विलेज मुगल ब्रिचा से और सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश होगी तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैं विनय कुमार सिंह बिरवा से और मुझे विश्वात्मा का गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से और आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगाज करते हैं और सुनते हैं पहली फरमाइश। हम सभी सरिया वार्ड नंबर 4 से मैसेज करती हैं अमृता जी, नदिया के पार की गाने के फरमाइश करती हैं, सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रियम छिम 94 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि गाने के फरमाइश पुराने होने चाहिए, 90s के होने चाहिए, तो ही आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाएंगे, वरना आपकी फरमाइश नहीं प्ले हो पाएगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, तू नींदों की रानी और मैं प्यार कर सपना, और उदित नारायण की आवाज़ में। तो चलिए आपकी फरमाइश उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में है, सुनते हैं इनके पसंद के गाने। और इस गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश भी पूरी करेंगे, और कुछ मैसेज है तो मैसेज भी शामिल करेंगे। और यहाँ पर आगे मैसेज शाहजहाँ के तरफ से पहुँचा हुआ है, और कहा जा रहा है कि हम कई दिनों से मैसेज कर रहे हैं, हमारा गाना नहीं बजा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो दिक्कत तो कोई नहीं है, बस आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। आप कई दिनों से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बट आपने नई गाने की फरमाइश कर रही हैं, जिसके वजह से आपके गाने हमने नहीं प्ले किए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैसेज करती हैं प्रीति रैदास। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल लीजिएगा, और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुपर सॉन्ग सत्यम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, हमें भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग की फरमाइश, तेरी तिजोरी सोना नहीं मेरा दिल खिलौना नहीं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओल्ड इज गोल्ड सुपर लाजवाब सॉन्ग, हेलो क्या हाल है शबीना फ्रॉम दिलोलिया से, तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते भाई कैसे हैं, ठीक हैं सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है ना, मुझे गाना सुनना है भाई, सुबिता चौहान भुछपरा से मैसेज करती हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे सुरेश जी गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तो सुरेश जी आपकी फरमाइश हमने इस सप्ताह सुनाए हैं, हमें लगता है कल नहीं बीते परसों आपकी फरमाइश हमने पूरी की है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, क्या यह कार्यक्रम यूट्यूब पर सुन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ से अभी सेवा उपलब्ध नहीं की गई है, और ऐप के माध्यम से ही केवल सुन सकते हैं, रेडियो रिमझिम का ऐप इंस्टॉल करें और कहीं भी सुन सकते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और इस मैसेज को पहुँचाने वाले राजीव नगर वार्ड नंबर 4 से हैं, आदित्य पांडे जी, और आप ऐप इंस्टॉल करें, बिल्कुल कहीं भी आप जाएं एकदम सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कैलाश होटल से, और इस गाने की फरमाइश करती हैं अरशद जी की पत्नी जरीना, और अपने पूरे परिवार के साथ इनकी सिस्टर हैं, सब सुनना चाहती हैं लो। और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है अखियों के झरोके से, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने, हम सभी रेडियो रामझिम 90.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो रामझीम 94.4 FM पे सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे और आगे गाने की फरमाइश भी पहुँचे हुए। आगे लिखा गया कि सुपर सॉन्ग, और कहते हैं कि हाय सुनो भाई, मेरा गाना नहीं बजेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं बज पाएगा, क्योंकि आपके गाने तो हम सुना चुके हैं। सो आप दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कई दिन से लाइन में लगे रहते हैं और उनकी फरमाइश बाकी रह जाती है। आगे कुछ मैसेज पहुँचे थे, मैसेज दिखे, आगे मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो सर जी, मेरा एक वीक हो गया है। और इस मैसेज को करते हैं अनूप यादव लुधियाना पंजाब से, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। यदि आप लोग एक वीक बाद गाने के फरमाइश करते हैं या एक वीक हो गया है तो फरमाइश करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। और आप लोग अपने से मैनेज करें, दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं और समय बीत जाते हैं, बाकी लग जाते हैं उनके गाने को पूरा करना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो भी अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, आया आया प्यार का जमाना आया। चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रामझिम 94.4 FM पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 90.4 FM पे सोचल SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है विनय कुमार सिंह जी की तरफ से। यह मैसेज भी बिरवा से किए हुए हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वात्मा का गाना सुनना है, और गाने का बोल है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सोनम बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गीत को ज़रूर सुना देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपकी फरमाइश भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

सभी प्यारा संग रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, भाई मेरी गाना सुना दी, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शबीता चौहान विलेज बहुत छपरा से, और गाने की फरमाइश करती हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। सबसे पहले आपको भाई और सभी दोस्तों के साथ सुनना है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और आगे देखे तो समय भी देखे, काफी समय निकल चुके, बहुत कम समय बचे हुए हमारे पास, और हमें लगता है कि एक ही गाने प्ले हो पाएंगे आगे। और आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती हैं रोशनी, और आगे मैसेज पहुँचा थैंक्स भाई आपको धन्यवाद सविता। आगे मैसेज पहुँचा सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाले सफरोज अली जी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस मैसेज को पहुँचाती हैं मुस्कान गोपालगंज से, और गाने के फरमाइश करती हैं तू है 16-17 साल की, सुनाना चाहते हैं आपको और सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को, प्लीज सुना दीजिएगा। तो चलिए आपकी गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हैं, क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है, और इसके बाद से गाने शामिल में से शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी श्रोतागढ़ छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, और फिर अगले मंडे को मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तो आप सब सुनते रहें रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: मैंने

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

फोनी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे

0: स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: हेलो हेलो, क्या बोला था?

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: हमार बजरंगी

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello. नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, बात कर रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते।
6: नमस्ते,
5: क्या हाल है?
6: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
5: मेरा भी ठीक है। पहचान रहे हैं क्या?
6: गणेश।
5: पहचान रहे क्या?
6: जी बिल्कुल पहचान रहे हैं।
5: एक जानवर आ गए हैं, एक मुनोरमा नाम की लड़की। क्या?
6: हाँ।
5: सुनील दीदी हट गए हैं क्या अब?
6: नहीं, वो भी हैं।
5: मेरे को लग रहा है
6: तो वो
5: मेरे को
6: तो नहीं सुनते हैं आप
5: है ना?
6: तो फिर बताइए कैसे हट गई हैं?
5: नहीं, मेरे को लग रहा है कि आप लोग लगा कर वो साइड हो जाएगी।
6: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
5: तो जब सो चलते हैं तब आप चल जाती है क्या वहाँ?
6: कहाँ पे?
5: चलाने सो चलाने आप चल जाती है, वहाँ पर रहती है क्या?
6: कौन सा सो?
5: अरे चॉइस नहीं चलता है।
6: हाँ तो वो तो सोनी जी चलाती
5: है। उसी के साथ में
6: तो स्टूडियो के अंदर चलता है, तो अंदर अकेले स्टूडियो में सो चलाती हैं।
5: तो आप भी तो उस दिन गए थे कॉल?
6: हाँ, तो कभी कभी सर बोलते हैं तो जाते हैं लोग।
5: एक जन और आए थे तो सुनील जी बोल रही थी कि मेरे साथ एक और ऐसी है मुनोरमा जी आई है।
6: हाँ।
5: कल तो वहीं तो गए। अभी सुनील जी दूसरा काम में है क्या?
6: हाँ।
5: उस दिन आप रहे थे, सोमवार के दिन मेरे घर में गए तो आप साथ आए हैं।
6: हाँ वो भी आई हूँ।
5: बारिश हो रहा है?
6: नहीं बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम फिर भी ठीक है।
5: बोल दीजिए आप सुनील जी से कि आपको फोन कर रहा था गणेश में, तो बोल रहा था कि कहाँ पे है। तो वो सुनील जी बोलते हैं कि मेरे को भूल जा रहा है आप।
6: नहीं नहीं बता देंगे।
5: आप बोल देना कि पूछ रहा था गणेश।
6: जी जी बिल्कुल।
5: तो मेरे को गाना सुना दीजिए। कौन सा गाना? गाना तो याद भी नहीं आ रहा है।
6: आराम से
5: ये गाना दे दीजिए। तेरे यादों के चादर उड़ेगा, ये गाना हिंदी सॉन्ग है।
6: और सॉन्ग ये तो AI सॉन्ग है ना?
5: हाँ हिंदी में आता है।
6: चलिए, और सॉन्ग किसको ये डेडिकेट की है?
5: आपका है, सोनी मैम का है, जी के मनोरमा जी का है, सब लोग का है, जितना रेडियो रंग सुन रहे हैं सब।
6: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार भारती जी।
0: नमस्कार।
1: हम विमला कुमार शर्मा बोलते हैं जिगना मठ।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी ठीक।
1: अच्छा, कुछ समय पहले कॉल लगा रहे थे तो कुछ भी बोल नहीं रहा था, खाली कुछ भी पता ही नहीं रहा था,
0: तो नेटवर्क क्लियर नहीं होगा ना इसीलिए।
1: कभी जी चाहे कुछ भी बोलता ना, कुछ भी नहीं बोलता।
0: वैसे नेटवर्क जब नहीं रहता ना तो वैसे ही होता है।
1: हम लोग का तो दिक्कत नहीं रहता है नेटवर्क का, तो हम लोग का काम की तरफ।
0: अच्छा,
1: हो सकता है,
0: हो जाता है कभी कभी।
1: और सब अपना समाचार सुनाइए, क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस बातें हो रही हैं सबसे।
1: खाना पीना हुआ कि नहीं?
0: हाँ, खाना तो हम लोग खा ही आते हैं।
1: खाना खाना सुनने आप रहते हैं?
0: अभी तो ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हेलो माय चॉइस का, और भी बहुत सारे हैं होते हैं,
1: तो हमको गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
1: कौन सा मैं हमको कच्चे धागा का गाना नहीं है?
0: कौन सा सॉन्ग?
1: कच्चे धागा पिकर का जो फर्स्ट में ही गाना था, और ढेर दिन हो गया सुनने, गाना बोल नहीं बता सकते। उसमें कोई भी अच्छा जो लगे वो सुना दीजिएगा।
0: कच्चे धागे का
1: जी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी हाँ, आप हैं और सुनी जी है और रेडियो रंजन के परिवार है, और जितने लोग सुनने वाले रेडियो जी में है, गुड़िया जी है, निर्मला जी है, और संध्या जी, और जितने लोग सुनने वाले हैं तो दोस्त तमिल जी है,
0: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello, hello, hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, कैसे हैं?
6: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
7: जी मैम, बोल रहे हैं हम भी वहाँ।
6: अच्छा जी, नाम
7: जी सतरज अली बोल रहे हैं, टाइम निकाल के जुड़े हुए हैं। उस दिन तो हमारा कॉल 2 दिन में नहीं बजा मैम।
6: जी,
7: 3रा दिन बजा है।
6: अच्छा
7: हाँ,
6: थोड़ा बहुत ज्यादा कॉल होता है तो कभी कभी लेट बजता है।
7: हाँ, इंतजार लगता कल हुआ।
6: लेकिन गाना आपका बजा?
7: हाँ गाना बजा, लेकिन लास्ट में 1 मिनट साइड कट गया था।
6: अच्छा, चलिए कोई नहीं, उसी में सबका बजाना होता है, सबको देखना पड़ता है, और क्या ही कीजिएगा।
7: हाँ मैम, हम समझते हैं आपको, सबको देखना है।
6: सब ठीक है ना?
7: जी मैम, तो आपका खाना पीना हो गया?
6: हाँ हम, हमारा हो गया। और आप सभी का?
7: जी मैम, हम तो दुकान वाले हैं, हमारा हो गया है।
6: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
7: मैम मुझे गाना सुनना है दीवाना मूवी।
6: गाने के बोल?
7: गाने के बोल है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
7: सोनी मैम को, आपको, सभी सुनने वालों को, और खास तौर के आपके लिसनर हैं सोनू नाग, उनका फरमाइश हमको अच्छा लगता है।
6: जी जी,
7: और उनको सुनना चाहते हैं।
6: बिल्कुल, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, धनबाद में सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मेयर एमपी से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा जी, तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म है दिल का क्या कसूर, और गाने के बोले मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, यही अब सुनवाएंगे। कितने रेडियो रिमझिम जो दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते
1: हैं। बिल्कुल, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार।
6: सब मैम कैसे हैं आप लोग?
5: हम सब तो ठीक हैं, आप बता दीजिए आप कैसे हैं?
6: हमारा भी तो अच्छा है।
5: वैसे नाम बता दीजिएगा अपना।
6: हमारा नाम पड़ेगा ओम साई टेलर राघो जी, बंजारीपुर स्टैंड के सामने गोपालगंज।
5: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
6: आप लोग के दुआ से बहुत बढ़िया है।
5: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा?
6: आज सुनिएगा लैला मजनू पिक्चर का
5: सॉन्ग कौन
6: सा? कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: पहले तो आपको
5: जी,
6: और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ।
5: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैम शैलेश कुमार बराबर।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है मैम, आप बताइए।
0: हमारा भी ठीक है।
1: बारिश वारिश हो रही?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम अभी ठीक है, हवा चल रहा है।
1: हमारे अभी हुआ है, अभी सुबह से तो नहीं हुआ।
0: और बताइए, और
1: गाना सुना दीजिएगा। हाँ, सब बढ़िया है मैम।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: हाँ, तो मूवी का गाना है ना, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट दी है? अपनी
1: वाइफ को, पूरे रेडियो परिवार को, तमाम रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
2: पिता पियो के शरारे पीछे हैं ये सावन की

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: हम थावर आदन मार्केट से बोल रहे हैं दामाज प्रसाद।
5: जी जी, क्या हाल है आपका?
6: हाल चाल का जो है ठीक बा, बढ़िया मौसम होता है, वही लगा था बहुत याद है।
5: अच्छा जी, तो कौन सुतला के काम बा?
6: तो गाना सुना दी।
5: बता दी कौन सा गाना?
6: बोल बम के हाथी ना घोड़ा पलोल सवारी हम बाबा चल गए दुलारी।
5: और ये गाना कैसे सुनाऊंगे बा?
6: जितना रेडियो रिमझिम सुनता सबको ढेर लोग नाम धारा पर ढेर टाइम लगी।
5: अच्छा जी, चलिए कौन बात ठीक है, सबके सब आ रही है बोल दी।
6: चलिए
5: गाना प्ले करते नहीं, सुनक रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM
1: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
0: में। जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। मौसम में तो 2 दिन से ठंडापन लगा है। हाँ तो
0: तो अच्छी बात है।
1: हाँ मौसम में बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात भी है। अपना सब हम भूल गए जैसे आपसे बात हुई है।
0: हाय
1: मौसम में तो बदला हुआ है
0: जी।
1: तो हमको गाना सुनवाइएगा। बादल को बरसने दे, बिजली को चमकने दे।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी?
1: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर गुमनिया के कन्हैया प्रसाद को भी सुनवा चाहता हूँ।
0: जी
1: और सब सुनाइए, आपका ठीक है ना? सब खाना पानी हो गया?
0: जी, हम सभी ठीक हैं और हमारा खाना पानी भी हो गया है।
1: हाँ हाँ तो ठीक, गाना सुनवा दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते
1: हाँ
0: रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार,
3: भारती मैम बोल रहे जी।
2: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
3: दिल्ली से उमा शंकर मिश्रा। कैसा मौसम है वहाँ का?
2: बस थोड़ा बहुत धूप है, थोड़ा बहुत छांव है।
3: नहीं, यहाँ तो बारिश हो रही है कल से दिल्ली में। आज भी बारिश हो रहा है। तो मैम एक गाना सुनना था।
2: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
3: ओ, हाथी मेरा साथी फिल्म का गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के।
2: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
3: पहले आपको, सोनी मैम को और जितने लिसनर है सबको, खास करके रामा जी प्रसाद को।
2: जी जी बिल्कुल। तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: थैंक यू मैम,
2: वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू, मैं अनिल बोल रहा हूँ और नमस्ते आपको।
6: नमस्ते,
5: कैसी हैं?
6: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं। बारिश हो रही है?
6: हाँ हाँ, बारिश तो यहाँ हो ही रहा है।
5: हाँ, तो हमारे यहाँ भी पूरा मतलब शहर तो जलमग्न हो गया है और गाँव में भी बारिश उतना हुआ है जितना में खेती बाड़ी का काम हो सके। बहुत बढ़िया बारिश हुआ है
6: जी। यही तो अच्छा है कि सभी का खेती उसी में निकल जाएगा।
5: पाइप तो नहीं ढोना पड़ेगा ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है।
6: हाँ।
5: और इस बीच इस बारिश के मौसम में थोड़ा अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें वायरल फीवर या फिर डेंगू वाला बुखार भी हो जाता है लोगों। तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी इसमें।
6: अब कहीं कहीं पानी इकट्ठा होगा तो होगा ही।
5: हाँ, इसके लिए बचाव के लिए अपने

0: घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, मच्छरों से बचना है और वायरल फीवर से बचने के लिए हाथों की साफ सफाई और संक्रमित व्यक्ति से दूरी और संतुलित आहार और पर्याप्त आराम भी जरूरी है। और गाना सुनना है, एक शिल्पी राज का गाना आया था 2-4 साल पहले, वही दहता कजरा के धार बदरवा धीरे बरसा हो, यही वाला गाना प्ले कर दीजिएगा और सुनवाना है आपको और सोनी जी को, मनोरमा जी को और सोनू सर, बाकी जितने भी लिसनर्स हैं सभी लोगों को।
1: ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं
0: जी। थैंक यू मैम।
1: इसके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मेरा नाम हो गया अलाउद्दीन। कैसे हैं मैडम
1: आप, बताइए आप कैसे हैं?
0: ठीक है मैडम।

0: अपना बताइए। और असमित भाई बोल रहे हैं क्या?
1: हाँ, कहाँ से हैं आप?
0: जी अभी तो गोपालगंज में है।
1: मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
0: इधर कुचाई कोर्ट में।
1: अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप?
0: रहते हैं मतलब पूर्णिया में। ठीक है, मेरा असली घर है पूर्णिया में। यहाँ आए हैं सर, हम सब आए हैं पढ़ाई करने के लिए।
1: अच्छा, चलिए
0: बढ़िया। इसलिए हम कॉलेज पढ़ाई करते हैं। और बारिश हो रही है मैडम का?
1: हाँ, बारिश तो हो ही रहा है। बारिश हो रहा है, कभी हो रहा है तो कभी खुल रहा है, लेकिन लगातार बारिश हो रहा है।
0: बारिश हुई है, बारिश होती रहती है। पता नहीं हो गया मैडम?
1: हाँ, बढ़िया हो गया। आप कभी क्या हो गया तो बता दीजिए, फोन से गाना सुनिएगा, इस बार बता दीजिए, इस बार सुन लीजिएगा।
0: हाँ, तो ये बारिश वाला गाना है ना, जब कम पड़ जाए सांसे तो मेरा दिल बन जाना, ये वाला सॉन्ग।
1: जी,
0: ये वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, तो आप है और देखने वाले तमाम श्रोताओं को, किसी का नाम नहीं लिए है।
1: जी,
0: ऐसे कहेगा तो मेरा नाम नहीं लिया, उसका नाम ले लिया, सबको ले लिए। इसके बारे में
1: ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन।
0: पूरी गाना सुनाइए मैडम, इसे मजा नहीं आता है।
1: अच्छा,
0: अधूरा गाना रहता है ना, पछड़ा पूरी गाना सुनाइए, अच्छा रहता है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, नाम बता
1: रहे हैं
2: जी?
1: आप कौन बोल रही हैं?
2: मैं भारती हूँ
1: जी। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ।
2: और कहाँ से?
1: मुंबई से बोल रहा हूँ।
2: अच्छा,
1: और सब बताइए कैसे, क्या सब ठीक है ना?
2: सब ठीक है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, मुस्कुराहट है। बारिश हो रहा है बिहार में?
2: हाँ, बारिश हो रहा है इधर,
1: बाढ़ आ गया है मुंबई से।
2: अच्छा हाँ, उधर तो होते ही रहता है, बहुत ज्यादा होता है बारिश।
1: इधर बारिश,
2: लैंडस्लाइड भी हुआ है कुछ कुछ जगहों पे। उधर
1: उधर हुआ है, पुणे में हुआ है,
2: हिमाचल
1: प्रदेश में हुआ है, असम।
2: चलिए बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: कौन सिंह का कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहा है, अचानक ही फोन लग गई।
2: अच्छा तो कौन सिंह का सॉन्ग?
1: हाँ, कौन सिंह का अच्छा वाला गाना सुना दीजिएगा नया में।
2: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट करेगा?
1: जी आपको डेडिकेट रहेगा और सभी रेडियो इंजिन सुनने वाले लिस्टनर को डेडिकेट।
2: ओके, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैं तो आपको ठाकुर बजाय बजा का गोपाल बात कर।
2: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है जी, अपना बताइए।

0: ठीक है।
1: भारती जी बोल रही है, बारिश हो रही है आज?
0: बारिश हो ही रहा है।
1: गोपालगंज में बारिश हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम आए हुए हैं जलालपुर में। जलालपुर में यहाँ पे एमए का एग्जाम है हमारे भाई पापा, जाने के लिए आए हैं। अभी बारिश में ही बैठे हैं दुर्गा मंदिर के बाहर, बहुत बारिश हो रही है एक घंटा डेढ़ घंटा से। हाँ समय हो गया था इसीलिए फोन लगा रहे थे बार बार, अब जाके लगा है बिजी था फोन।
0: चलिए कोई नहीं,
1: कोई तो इसीलिए हम भी ट्राई कर रहे थे कि कभी तो लग जाए।
0: जी जी
1: बोल रहे हैं मैडम, जाना है करवा दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा
1: आज जो फिल्म का नाम है रात ही ना आएगी, और जाने का बोल है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी फिर तो जुदा अपने बाहों से होने ना है।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ ये पर्सनली मेरी वाइफ लिए है नीलम के लिए।
0: बिल्कुल,
1: और जितने भी श्रोता है जो पुराने सॉन्ग को सुनना चाहते हैं उनके लिए।
0: ओके,
1: और मैं आपके लिए भी रिकमेंड करना चाहूंगा इस गाने को, एक बार आप भी साफ हमेशा सुनती है लेकिन सॉन्ग आपके लिए भी डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
4: क्या हाल है?
5: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
4: मेरा भी ठीक है।
5: नाम भी बता दीजिए।
4: ताजिया नवादा से।
5: तो
4: नाश्ता हो गया?
5: हाँ, नाश्ता तो हो गया है।
4: आज सब बढ़िया है ना?
5: मेरा ठीक है। आप सब अपना बताइए, आप सब कैसे हैं?
4: हम लोग भी बढ़िया है। आज मेरे भैया की हल्दी मेहंदी है।
5: अच्छा जी, सब तो बहुत बढ़िया है।
4: बारिश से सब मिर्ची कर दिया।
5: अभी उधर बारिश हो रहा है क्या?
4: हाँ, इधर बारिश हो रही है। उधर नहीं हो रही क्या?
5: नहीं, इधर भी हो ही रहा है। चलिए फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा। तो आज कह रही हूँ हल्दी मेहंदी का सॉन्ग नहीं सुनिएगा।
4: सुना दीजिए अपने साइड से कोई सा भी।
5: अच्छा जी, आती है ना भैया का हल्दी है?
4: हाँ, मेरे भैया का हल्दी है, उसी के साइड हो रहा है बिखेरवा में।
5: जैसे नाम क्या है आपके भैया का?
4: इम्तियाज आलम। अपने पसंद से अच्छा वाला गाना बजा दीजिए। सबसे पहले आपको और सोनू सर को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को, सुनने वाली और लीज लड़के सुनवाना चाहती हूँ। कब तक बज जाएगा?
5: कोशिश करते हैं कि आज ही के दिन बज जाए।
4: ठीक है ठीक है। तब तो मैं तो रेडियो सुनती हूँ, कितना भी काम क्यों ना मेरा रेडियो कर रहे थे। कोशिश कीजिएगा आज ही का।
5: जी जी बिल्कुल। ओके, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
4: थैंक यू मैम।

0: हेलो। हाँ
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
0: जी, मैं नमस्कार
1: नमस्कार
0: मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मकरजे से।
1: जी, क्या
0: जी
1: हाल
0: आप?
1: चाल है?
0: बस बढ़िया है मैम, खेती बाड़ी में लगी हुई है, मक्का बोई। मक्का बो रहा है, किसान है।
1: बढ़िया है। बारिश नहीं हो रहा है क्या उधर?
0: हाँ, बारिश हो रही है मैम, गुना MP में बारिश आ रही है।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
0: जी, आपके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: आज मुझे सुनना है आग और शोला।
1: कौन सा?
0: आग और शोला प्लम का गीत है।
1: कौन सा गीत?
0: न गीत है, एक बारिश के ऊपर गिरे बर्फ आगे बरसा, आगे बरस बरसा है पानी।
1: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी मैम, क्या
1: सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ जी मैम,
1: बता दीजिए।
0: हमारे मित्र हैं गोपाल ओझा जी हैं, अमर सिंह गिल हैं, उसमें सुनील साहू जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं और लोकेन वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह ससोदिया जी हैं।
1: जी, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी मैम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Regional.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:18 पे होगा और सूर्यास्त 6:42 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। लोग चाहते हैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:00 हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: तू जो है।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो